FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: Hürvan.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियार हुई।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशी खिदमत है हसरत मुहानी की।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: यारों किसी का

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: You smack him back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी।
1: आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामाई नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर आपको बताया था कि आज हमारे लाइव मेहमान होंगे, एक तो हमारे थिंक टैंक हैं, दूसरे हमारे तजिया निगार हैं और दोनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं कम्यून की सियासत पर, लोकल सियासत पर। और आजकल आपको पता ना जी कि बजट भी जो है पेश हो रहा है, बजट पर भी बहुत सारी बातें जो होती हैं। तो हम शुरू करते हैं, दो मेहमान हैं, मैं तारफ़ करा दूँ, सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ। दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
2: जी राजा साहब, आपको भी, आपके लिसनर को भी और आपके नाज़रीन जितने भी हैं और अदनान सबको मैं अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। शाह साहब शुरू करते हैं, सवाल है, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, बारी बारी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि इस साल के कम्यून के बजट की सबसे आम तरजियात क्या है जो आपके पास इंफॉर्मेशन है।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो सबसे बड़ी तरजियात होनी चाहिए वो ये है कि जो इस वक्त क्राइसिस में डेनमार्क चल रहा है उसको कैसे निकाला जाए, वो बजट में नहीं है। और जो बजट में है वो यही है कि कितने मकान बनाए जाए, लाइट हाउस बनाए जाए, कितनी सड़कें बनाए जाए, कितनी पार्किंग प्लेसेस बनाए जाए, कहीं कहाँ से स्कूलों की जो आमदन है वो स्कूलों को कहाँ से कट किया जाए, कहाँ जो बच्चे हैं उनको किस तरह सहूलतें जो हैं उसको माइनस किया जाए। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, जो बजट अभी 100% बजट की जो शक्ल है वो रिटन सूरत में कहीं भी नहीं आई, सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है, जो हम कॉस्मोपोल टीवी और दूसरे अखबारों से हमें जो थोड़ी बहुत खबर मिलती है या कोई तजिया नगार डैनिश जो है वो बात करता है तो उसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी चल रही है कि छोटी जो वेस्ट टाइप की जो कम्यूने हैं इसके अंदर अभी तक वो गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही जो कोपेनहेगन कम्यून के अंदर आ रही है।
1: कम्यून के अंदर आ रही है, बिल्कुल। साहब आपने बजा फरमाया। अदनान, यही सवाल आपके लिए, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं करीब से।
3: सब इस वक्त देखा जाए ना, सबसे बड़ी बात यह कि जो बजट है ना ये बड़े मुश्किल है क्योंकि जो मसाइल हैं उनको देखा नहीं जा रहा और उन पे बहुत सारा क्या कहते हैं जिसका सेविंग करने की कोशिश की जा रही है। और बेस्तान में भी वही सेम चीज चल रही है और वही कूपन है में चल रही है इस वक्त। और इस चीज को देखा जाए ना टेक्टिकली तो ये प्रॉब्लम पाएगा क्योंकि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि स्कूल्स, ओल्ड रूम्स और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मगर उसके अंदर बंदा देखे ना सारी कम्यूनों को एनालाइज करे और जिन जिन से हमसे हमारे रबते भी हुए हैं और जिन जिन से हमारी बात भी हो रही है और जो टेबल पे बातें भी हो रही हैं वो यही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इतना सारी बजट ये करके तो लॉन्ग सेक्टर पे ये नुकसान है। और इस चीज़ों पर कुछ पार्टी साड़ गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मसला ये होता है कि एक और चीज है जो मैं कह दूं कि इस साल जो पैसे कमून को मिलते हैं ना स्टेट पुलिस एक पुलिस है वो भी डीप तरह से कमूनों को दिए गए हैं। तो देखा जाए तो इससे डीपली कुछ कमूनों के अंदर जो एक्सपेक्टेड था ना कि उनको मिलना है उनको वो नहीं मिला, तो उससे क्या कहते हैं उनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्ट टाइम पे भी काफी क्या कहते हैं टफ टाइम है और काफी पार्टियां जो है वो
1: क्योंकि
3: फायदा उस वक्त होता है जब आप बच्चों वाली फैमिली को या जो बुजुर्ग हैं जिस तरह ये इस तरह की चीजों पे बंदा क्या कहते हैं फोकस दे, मगर जब आप शुरू से ये बजट के अंदर लिख दें कि जो ये वेल्थी वाले डेफिनेटली ऊपर जो बैठे होते हैं कुछ सियासतदान उनको मालूम होता है वो शुरू से लिख दे कितने पैसे बचाने हैं ना, तो फिर शुरू से ही क्या कहते हैं एक माहौल बड़ा चेंजेस हो जाता है। अभी जैसे कोपेनहेगन मून है, उसके अंदर जो जो खबरें बाहर आ रही हैं, मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही कि ये SF इंग्लिश लिस्ट वाले बैठे हुए हैं, ये विंगस्टार कंसर्वेटिव वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी नजर बाहर आ रही है वो तो उनकी आ रही है नजर। तो इस तरह से बंदा देखे ना तो बहुत सारी बातें अंदर से बाहर निकलती जा रही हैं, आती जा रही हैं, क्योंकि जो वो होता है ना एक सिस्टम होता है ह्यूमन स्वा का, वो करीबन लोग जो अपना राय दे सकते हैं स्कूल और सारे लोग, वो कल तक खत्म हो गए हुए हैं, आज मतलब 3 तारीख तक, तो मतलब समझे कि कल परसों तक ये नेगोशिएशंस
1: मतलब
3: जो है ना
1: बिल्ली
3: ये
1: जो है वो
3: साफ
1: थैले से बाहर आ जाएगी। शाह साहब आप बताएं, शाह साहब आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है इस बजट में बड़ा?
2: जी इस वक्त तो आम आदमी क्या, इस वक्त आप देखें कि पार्टियों के अंदर इनकलाब आने शुरू हो गए हैं। आप देखें कि वेंस्ट्रा के अंदर जो है वो अपने पार्टी फॉर्मेट के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, क्योंकि लैंडमैन जो है जो जराइत का काम करते हैं उनके अखराजात जो है वो आसमान से बातें करने शुरू कर दिए हैं, और फिर उनके बच्चे भी हैं, जैसे अभी अदनान ने बताया कि उनके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में जाना है और दूसरी जगह पे, और उनको जो बेंजीन और डीजल की गाड़ियां हैं उनके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं ये सामने नहीं आ रही, बल्कि पिछले इस हफ्ते में जो प्रोटेस्ट हुआ है अपना लैंडमैन का फलके सिंह के सामने, वो भी खुल के सामने आ गया है। तो मसला ये है कि SF और इनिस लिस्टन ने जो वादे किए थे अवाम के साथ वो सवालिया निशान बन चुके हैं, क्योंकि जो अभी तक ना SF वाले बता रहे हैं जैसे कि अदनान ने बताया, ना SF वाले बता रहे हैं, ना इनिस लिस्टन वाले बता रहे हैं, ना ही उनकी जो स्पोर्ट पर दूसरी रेडिकल वगैरह या सोशल डेमोक्रेट ये बता नहीं रहे कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो फेस की है। हालांकि इनको चाहिए, आज आप देखें तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 18 करोड़ का हो गया है, ये डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन पेट्रोल हो गया है। और इससे आप ये देखें कि अगर कोई फैमिली है जिनके पास पेट्रोल गाड़ियां, मेजोरिटी के पास इस वक्त कोपेनहेगन और वेस्ट आइन के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है, और वो इतनी महंगाई में जब उनकी वही पे है और वही पेंशन है हर एक चीज है, तो वो किस तरह करेंगे? कम्युनिटी इसके ऊपर बात नहीं कर रही, क्योंकि असल में हम स्टेट ने तो हमें इजाजत दी है कि आप पूरे डेनमार्क के अंदर कहीं जाकर रह लें, लेकिन जहां हम जाकर रहते हैं वो हमारी कम्यून होती है, और कम्यून जो होती है वो एंसवाली होती है, अपने जो अवाम होती है जो उसके उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, फल्क होती है। तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि एल्बर्सोन कम्यून जो है उसने अभी तक कोई ऐसी चीज शाया नहीं की कि हम देखें कि इसके बजट में कौन सी जो है वो अवाम दोस्त है। मैं तो यही कहूंगा जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि ये अमीराना बजट जो है वो सामने आ रहा है।
1: दोस्त जो ये अमीरों का बजट है। अदनान आप क्या कहते हैं कि क्या मौजूदा बजट अवाम की जरूरियात तो पूरी करता है, क्या हकीकी जरूरियात पर पूरी कर सकता है, पूरी करता है या कर सकता है?
3: सब जिस तरह से बजट अभी है वो कोई पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि मसला ये है कि जैसे हम लोग कभी भी, मैं 2-3 एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ, 3-4 दे सकता हूँ। हम देखे मिसलन ग्लोव स्टोव देखे, हाई कार स्टोव देखे, ब्राउन भी देखे, और कुछ बंदों ने फिर रबते भी किए और इस्लाम मसले भी किए, और जब हमने वो इनको चेक किया तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि उसके अंदर कोई ऐसा क्या कहते हैं पॉइंट नहीं था। कुछ पॉइंट है थे जो बंदा कह सकता है कि अनसाइनिंग कर सकता है, मगर आप जब लेसी आप को एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ कि बंदा हाउस प्लेस देखें कोपेनहेगन, सबको पता है हाउस प्लेस है, आप वहां पे कोई बिल्डिंग हो उसको आप उठा के ना पो ले जाए, वो वालदेन के लिए कोई कोई आसानी तो नहीं ना होगी। और इस ये चीजें इस तरह इकट्ठा करना, एक जगह से लेके उधर चले जाना, उधर से लेके इधर चले जाना, ये करना वो करना, वो बड़ा मुश्किल क्या कहते हैं चीज हो जाती है। और जैसे ये अभी कहा गया है कि ये जो आज एक किस्म की क्या कहते हैं टेक्टिकली हिस्ट्री है, کہ ونستا کی نیشنل جو پارٹی ہے اس میں سے 19 سیٹوں میں سے 5 نے جا کے کہا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے خلاف یا اگینسٹ یہ کہتے ہیں ووٹ دے دیے. مطلب آپ دیکھیں کہ 29% نے اپنی پارٹی چیئرمین کے اگینسٹ دے دیے. پارلیمنٹ کا جو ورکنگ اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہے اس کی جو پارلیمنٹ کو چلاتا ہے جس کی ایک قسم کی کہاں بھی اور پاور بھی اتنی ہوتی ہے جتنی پرائم منسٹر کی ہوتی ہے, وہ اگینسٹ چلا گیا ہے کہ میں نے نہیں ووٹ اس کے حق میں دینا. تو یہ دیکھیں نا, مطلب کہ ایک قسم کی فرسٹریشنز اپنی پارٹیوں میں کافی ہے اور اور اور کافی کیا کہتے ہیں مصیبتیں ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ بنزین جو ہے ہم سب نے پیک کیا تھا کہ سمر کے بعد یہ 16 پہ کھڑی رہے گی, 15-16 پہ, مگر وہ 18-19 پہ پہنچی ہوئی ہے. تو تو دیکھیں نا کہ کچھ نہ کچھ تو حل کرنا پڑے گا نا. آپ دیکھیں صورت حال, آپ پرائزز دیکھیں, وہ بھی وہاں پہ ہی کھڑی ہیں, وہ بھی کوئی اتنی ڈاؤن نہیں ہو رہی وہاں پہ کھڑی ہیں.
1: جناب جس طرح بتا رہے ہیں, کیا شہریوں پر ٹیکس یا دیگر اخراجات میں اضافہ جو ہے متوقع ہے؟
3: نہیں, ٹیکس تو نہیں ان نے بتانا, وہ تو میں میرے خیال سے وہ نہیں آئے گا ٹیکس, کیونکہ وہ ٹیکنیکلی نہیں. مگر یہ بندہ سپیک نہیں کر سکتا کہ ٹیکس نیچے ہو, ٹیکس وہاں پہ ہی رہے گا. جو ٹیکس نے کیا کہتے ہیں اٹھانا تھا وہ تو ڈیسائڈ ہو گیا ہوا تھا, مگر وہ 2028 سے ڈیسائڈ ہوا ہوا ہے, کیونکہ وہ پھر یہ جب نیشنل بجٹ بنے گا نا فینس لاؤ کا, تو پھر اس کے کیا کہتے ہیں اس کے اندر آئے گا جو ہے. قیمتوں کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ یہی ہے کہ جو سویڈن کا ماڈل ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فنی چیز یہ ہے کہ سویڈن کے اندر جو ماڈل لایا گیا ہوا ہے نا, وہ ریڈ پارٹی یعنی کہ لائی وہ پولی پچی لائی تھی اپنے بیلے میں جب وہ لائے تھے. تو وہی سسٹم یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے, مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم ابھی سال لگ سکتا ہے آنے میں. تو وہ سال لوگ ایک سال تو نہیں نا انتظار کرنا چاہتے, لوگ تو کچھ اب بھی اس وقت کیا کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جہاں پہ میں سارا سب بیٹھے ہوئے ہیں بسلور میں, یہاں پہ تو پہلے ایک کیا کہتے ہیں بجٹ آیا اس کا تو ایک پہلے ایک بم تھا, اب دوسرا بم یہ ہے کہ یہ جو ان کو چھوٹ ملتی ہے وہ بھی ان کو نہیں ملنی. تو اب انسپیکٹر ہے کہ پیسے کہاں سے لائے جائیں گے اور کیا کیا جائے گا. اور یہ چیزیں تو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بیٹھے رہے ہیں اور ہم ٹیبلوں پہ بھی کافی آئے ہیں ریسنٹلی, مگر وہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لانگ سیکٹر پر پریپریشن کرنی پڑے گی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک کیا کہتے ہیں یہ ایران کا اوکرین کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, اتنی دیر تک یہ پرابلم رہنی ہے, کیونکہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اوکرین کی طرف جاتا ہے. ابھی یہ 2 دن پہلے خبر میرے خیال سے آئی تھی کہ اب اوکرین پھر ہونے لگ پڑا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہا. تو یہ ایک بہت

0: पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देगी, जैसे अब बढ़ी है, जैसे कि अब सिट्रोन जो है, नींबू जो है, 3-4 नींबू जो है वो 24-25, 25-25, 30-30 करोड़ के हो गए। इसी तरीके से सेबों की, फ्रूट की जो कीमत है, इन्होंने जनवरी में ये शो डाला था कि हम आएंगे तो हम जो मम्स हैं उसको गिरा देंगे और मम्स कम हो जाएगा, जुलाई के अंदर कम हो जाएगा, फिर हम प्राइसेस जो है उसको कम कर देंगे फूड से। तो ये इन्होंने नहीं की, बल्कि अब ये चीज हो गया है कि अगर ये कल को, पहली जनवरी को या उससे पहले ये मम्स खत्म करते हैं तो फ्रूट तो फिर भी महंगा है, सब्जी तो फिर भी महंगी है, क्यों कि वो प्राइसेस इतनी हाई चली गई हैं। तो उसमें से अगर वो 25% मम्स निकालेंगे तो फिर भी जो है वो अगर इस वक्त जो 25-30 करोड़ के जो 4 नींबू मिल रहे हैं सिट्रोन, अगर आप उनमें से ये निकाल लेंगे तो वो आप देखेंगे कि इनको 1 या 2 करोड़ सस्ता होगा वो। तो ये नुकसान जो हैं ये आवाम से पूरे किए जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल गुलामाना जहनीत की है और ये चाहती है कि हम लोगों को दबा कर रखे। और दूसरी चीज, आपने दौरान की बात पे गौर नहीं किया कि वेस्ट आइन के अंदर और कोपरेगन के अंदर जो है वो, चलो कोपरेगन की तो बात एक अलग चीज है, वो बड़ी कम्यून है, लेकिन वेस्ट आइन के अंदर जितनी भी कम्यून है इसके अंदर ज्यादातर नए मुंतखब काउंसलर्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा अफारिंग नहीं, इतनी ज्यादा तजर्बा नहीं, उनको पता ही नहीं कि बजट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ सुन के तो हिसाब किताब नहीं लगाना, वो किसी चीज पे बहस नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कि किस पोलियो से, किस जगह से हम पैसा उठाकर कहाँ लगाना है। वो तो जैसे उनको पार्टी कहेगी, उन्होंने कहा जी हमने तो मुआदे किए हुए हैं, हम इस पे हाँ करेंगे, तो आपने भी हाँ करनी है। तो ज्यादातर इंटरेस्ट इस वक्त कोई नहीं है मेरा ख्याल में, कि अगर ये इसी तरह
1: शाह साहब,
0: रहा
1: लगता है कि आप
0: तो
1: पॉइंट स्कोरिंग की बात करेंगे, पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। अदनान, आप बताएं कि स्कूल के बच्चों के लिए बजट में कोई खास रखा गया है, कोई चीज रखी गई है, कोई खास बजट रखा गया है?
2: नहीं सब जे जो मैं एक एक बात कह दूं कि ये बात जो साहब कह रहे करेक्ट है बहुत सारी चीजों का। मसाइल पता है इस वक्त दो चीजों की मसाइल भी हैं कि देखा जाए ना, जिस तरह है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए ना, तो वेस्ट आइन में ना और कुर्माउन आम के अंदर ना बहुत सारी क्या कहते हैं तब्दीलियां आई हुई हैं, बहुत सारे नए मेयर आए हुए हैं, नया क्या कहते हैं कैबिनेट्स आए हुए हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम लगता है कि उनके एक्सपीरियंस से उस चीजों के अंदर रहने से, क्योंकि आप देखिए कोपेनहेगन में तब्दीली आई हुई है, क्लर्सहॉक्स में तब्दीली आई हुई है, ब्रॉनबी में भी एक किस्म का नया ही है, 1-2 साल वो वहां बैठी थी, एसएफ बैठे हुए हैं, बिलो में भी, एबिसलोन में भी क्या कहते हैं चेंज आया था, तो ये एक, और एबिसलोन में तो ऐसा चेंज है कि देखा जाए तो टेक्निकली तो आवाम जो है वो है रेड मगर बैठा एक ब्लू हुआ है, तो मतलब कि ये टेक्निकली बड़ी होता है। जो आपका सवाल है उसके अंदर मैं आपको एक मोटी सारी एग्जांपल दे देता हूँ। हम एक यहाँ पे एमस्टोन के अंदर एक चीज बनी थी कुछ कुछ अर्सा पहले, उसका ये जो नया बंदे बैठे हुए हैं इनको मालूम ही नहीं है कि वो चीज स्कूल के अंदर सिस्टम है, वो सिस्टम स्कूल बड़ी मुश्किल से चला रहा है। अब ये जैसे बैठे हुए हैं सारे, इनको पता ही नहीं कि वो सिस्टम कैसा है, क्योंकि सियासी बंदे बहुत नए हैं और वैपनिंग में भी बहुत नए हैं, तो फिर वो थोड़ा होता है कि बंदे
1: अदनान
2: को
1: देखे
2: टाइम
1: ना,
2: लगता
1: ये
2: है कि
1: नए तो अपनी जगह, उसके लिए जो आगे देखना है कि जो जरूरियात हैं वो किस तरह पूरी करें। नए की तो जरूरियात पूरी होती रहती हैं, कोई भी मेयर बन जाए, कोई भी हो जाए। आप देखे ना, नौजवानों के लिए खेल, तालीम, रोजगार के हवाले से भी तो कुछ रखा जाता है ना। क्या इकदाम कर रहे हैं?
2: सब वो तो
1: अगर नौजवान आए हैं तो
2: निगोशिएशन,
1: उनके लिए नौजवान क्या कर रहे हैं मेयर?
2: ये क्वेश्चन तो अब कोई बंदा क्या कहते हैं मेरी बात सुन के शायद नाराज हो जाए गुस्सा कर जाए, मैं आपको एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ। ये जहाँ मैं और क्या कहते हैं हम साथ साथ बैठे हुए हैं, जिस दिन यहाँ पे इनने बजट वगैरह पेश करना था और सारी टीम को क्या कहते हैं बताना था कि हमने ये खेचलो बनाया और हम इस तरह जा रहे हैं, वहां का डिप्टी मेयर ने कह दिया था कि पता नहीं किस

0: وجہ سے اس نے معزت کر لی ہوئی تھی, اور یہ ڈیٹ کم از کم 6 مہینہ پہلے پتا تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی کہ کیا نہیں تھی, وہاں پہ ڈپٹی مین نہیں تھا, اور بعد میں وہی سوچ پہ گیا تھا کہ یہ بندہ ہر بار ایسے کرتا ہے. تو میں نے پھر ایک بندے کو میں نے ادھر یہی کہا کہ دیکھیں اب وہ بندہ ایسے کرتا ہے تو یہ تو پھر آپ کو خود ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا کہ وہ کیوں کرتا ہے. یہ تو پارٹی کو کہیں کسی کو کہیں تو بندے کو پتا چلے نا, کیونکہ جب آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈپٹی میئر ہیں, آپ کے پاس میئر کے پاس رسپانسبلٹی ہے, آپ کا ایک لیدر سا رول ہوتا ہے کیونکہ آپ نے مین رول پلے کرنا ہے. ایون یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شاید نہ ہو, وہ شاید ٹیم میں شاید دوسری ٹیم بنائی ہو جس نے نیگوشیشن کرنا ہو, مگر وہ لہرا بات ہے. مگر اس کا کام تو اتنا ہے نا کہ وہاں پہ ہو, اس کو بتا سکے کہ ہم نے یہ کیوں ایسے کیا ہے, یہ کیسے کیا اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیوں ہے, ہم نے کیوں اتنا 58 مینس کیا کہتے ہیں بچانے کا پلان بنایا ہو. تو بندے کو اتنا تو پتا ہو نا کہ کیوں بنا ہے اور کس وجہ سے بنا ہے اور اس چیز میں کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2-3 چیزیں یہاں پہ امسلون میں ہیں جس پہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں, مجھے پتا چلا ہے کہ روسکیلے میں بھی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے اندر تھوڑا فرسٹریشن ہے اس بار, اور مجھے پتا ہے کہ لوگ اس بار بہت سارے سوالات کر رہے ہیں. میں نیوٹرل وے سے بھی کہہ سکتا ہوں, میری جو پریشان ہے اس وجہ سے مجھے بڑے سوال کیے گئے ہیں, اور میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں جواب دے سکوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فرینکلی اس وقت خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لینڈ کیسے ہوگا, کیونکہ میں امسلون کی بات کر رہا ہوں, ٹاسٹو میں مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے اور جگہ پہ بھی کچھ جگہ پہ یہ لینڈ کرنے بڑے مشکل ہے سارے. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بندہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے پیسے کو ایک ایک کروڑ کو دیکھ کے اس بار آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویورز کے لیے انفارمیشن میں دے دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2027 کا بجٹ ہے نا, اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کہ کچھ جو پہلے ایکیومز کے اندر آپکیو ہوتے تھے نا, وہ آپکیو کمون کے اندر بھی آ گئے ہیں, وہ کمون کو دے دی ہیں اور وہ پیسے فالو نہیں ہوئے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو اب یہ بھی ایک مسائل ہے کہ آپ کو کام زیادہ مل گئے ہیں مگر سر آپ کو وہ پیسے نہیں ملے, تو یہ بھی تو اب دیکھنا ہے.
1: کام شاہ صاحب زیادہ مل گیا تو پیسے نہیں ملے, تو شاہ صاحب یہ میں آگے دوسرے مسائل کی طرف بڑھتا ہوں, کیا جو غیر ملکی ہیں یا تارکین وطن ہیں, مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کو جو ہے ابھی ان کو بھی ایک کی طرح کے مناسب موقع ملتے ہیں ہر چیز میں؟
2: جی بالکل, سب کو ملتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ آئین اور اپنی لوکل جہاں وہ رہ رہے ہیں کمیونٹی, ان کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابھی عدنان نے بڑی پیاری بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا دیکھوں گا اور بتاؤں گا تاکہ آپ کے ویوز کو جو ہمارا مسئلہ ہے وہ سمجھ آئے. 70s, 80s, 90s کے اندر یہ ہوتا تھا, mid-90s تک یہ ہوتا تھا کہ جو کمیونٹی ہوتی تھی اس کے اندر جو ہوتے تھے نا کریس, جس کو ہم حلقہ کہتے ہیں, اس حلقے کے اندر جو ہوتے تھے مختلف پارٹیز تھی, مثلا سوشل ڈیموکریٹ ہے, ریڈیکل ہے, وینسا ہے, کنزرویٹو ہے, جو بھی پارٹی ہوتی تھی وہ اپنے جو لوکل پرابلم ہوتی تھی اس پہ بحث کرتے تھے. اس کے اندر پارلیمنٹ کے ممبرز یا جو نامزد ممبرز ہوتے تھے یا کونسلرز وغیرہ وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے, پھر اس کے اوپر ایک ڈسکس ہوتی تھی اور دیکھا جاتا تھا کہ علاقے میں سب سے بڑی پرابلم کون سی ہے, آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے. تو اس دفعہ جو عدنان بات کر رہا ہے, اس دفعہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کے لوکل پرابلم کیا ہے اور بجٹ میں کیا پیش کر دیا گیا اور لوکل لوگوں کی پرابلم کیا ہے. اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ پورا مہینہ سپٹمبر کا اسی طرح مہنگائی رہی تو اگلے مہینے میں اکتوبر میں لوگوں کی چیخیں نکل آئے گی, لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, اور یہ جو ٹیکسیز وغیرہ کا اور یہ دوسرا جو ڈرائیونگ سسٹم ہے, جتنا بھی ڈنمارک کے اندر جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, یہ بھی کلاپس ہو کر آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آلریڈی جو آپ کی ایس ہو ہے, ٹرینز وغیرہ ہے, اس کے اندر ڈرائیور نہیں ان کو مل رہے, وہ بھی فرسٹریشن میں سب لوگ, کیونکہ وہاں کے جو ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور جو ان کو پے مل رہی ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اس چیزوں پہ سوچنا چاہیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدنان نے جو پٹ اپ کیا مسئلہ وہ یہی ہے کہ جو ہماری لوکل کمیونے ہیں کیا وہ اپنے عوام کی جو اس کے اندر رہ رہے ہیں ان کی فرسٹریشن کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو پارٹیز ہیں, ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ فور کے پارٹی کا فورمین آ جائے, انگا سوئے کی پارٹی کا فورمین آ جائے, کوئی اور آ جائے پاور منسٹر, کیونکہ یہ جو پرانی پارٹیز ہیں ان کے پاس جو ناتجربہ کار لوگ سامنے آئے ہیں ان کا عوام سے رابطہ نہیں. اگر وہ عوام سے رابطہ رکھیں گے تو یہ چیزیں آگے چل کے ٹھیک ہوں گی.
1: تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اب آتے ہیں اگلی طرف بڑھتے ہیں, یہ جو مسائل سماجی مسائل ہوتے ہیں, شاہ صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ بھی پینشنسٹ ہیں, بزرگ ہیں, عدنان تو جوان ہے ابھی, یہ جب بزرگوں یا ان کے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں یا خاندانوں کے لیے بجٹ میں کوئی سہولت رکھی گئی ہے یا سہولیات رکھی گئی ہیں؟
2: جی نہیں, بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی رکھی گئی ہے, بلکہ ان کو ایک جو ہے وہ گلاب جامن یا لالی پاپ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگلے سال ہم یہ کریں گے. بھائی چیخیں ابھی نکل رہی ہیں, مہنگائی ابھی ہے, ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں اس وقت ہوا میں ہیں, لوگ میجورٹی فرمیں بند ہو رہی ہیں, آبس سے بڑھ رہی ہے, ٹیکس کیسے جائے گا؟ جب زیادہ لوگ کام کرتے ہیں تو کمیون کے اندر ٹیکس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, لوگ زیادہ امیر ہو جاتے ہیں, کمیون بھی جو ہے اس کے بجٹ میں بھی زیادہ پیسہ آ جاتا ہے. تو اب جب یہ ساری پرابلم ایک ساتھ زیادہ آ گئی ہم پہ, تو عوام جو ہے وہ تو پس کے رہ جائیں گے اور کمیونیں جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ بہتر یہی ہوتا کہ کمیونوں کو چاہیے تھا کہ جو ان کے علاقوں میں ایکسپرٹیز دے رہے ہیں یا ایکس سیاستدان جو پہلے تھے ان کو بلا کر ایک ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی کہ جو میجر پرابلمز ہیں اس کا حل کیسے کیا جائے. مثال کے طور پر جو بچوں والی فیملیز ہیں یا وہ جنہوں نے جو گاڑیاں یا ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹ میں یہ ٹرینز بھی آتی ہیں سارا کچھ, اس سے جو سارے ریلیٹڈ ہیں اگر وہ کل کو بیکار ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حل ہوگا؟ کیا وہ یہ جو 15-20,000 کروڑ ان کو ٹیکس کاٹ کے تو ان کو تھوڑے سے رقم ملے گی, کیا اس میں وہ گزارا کر لیں گے؟ کیا وہ اپنے مکانوں کا کرایہ دے سکیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کمیونوں کے اندر رہتے ہوئے بھی اس وقت انہوں نے جو انملی پولیس ہیں ان کے کرائے جو ہیں ان کو بڑھایا ہے, کم نہیں کیا, اور یہ بھی کمیون کا فرض بنتا ہے کہ وہ انملی پولیس سے بات کرے اور ان کو سمجھائے کہ بھائی آپ جو ہے یہ کرایہ دن بدن نہ بڑھائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بل جو ہیں یہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر تو مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا. جی راجہ صاحب,
1: آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی کہ لوگوں کی جو ہیں وہ چیخیں نکل رہی ہیں, چیخیں تو ڈیفینیٹ نکلیں گی اور بہت ساری نکلیں گی. اب دیکھیں عدنان, جب یہ بجٹ بنایا جاتا ہے تو کیا شہریوں کی شکایات یا تجاویز کو بجٹ میں بجٹ کے عمل میں کس حد تک شامل کی جاتا ہے, جاتی ہیں یا جاتی ہیں؟
0: سب دیکھا جائے, اس سال میں ایک چیز کہوں گا کہ کیونکہ میں کافی سالوں سے اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں, انالائز بھی کر رہا ہوں, اس سال وہ ساری پریشانیاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پہ غور سے اور عمل بھی کر رہے ہیں. مگر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ نے ہر مسائل کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور آپ نے ڈیپلی اس کے اندر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اس بار مسئلہ یہ ہے کہ کمونے جو ہیں نا وہ ہر طرف سے اپنا کوشش یہ کریں گی کہ لانگ سیکٹر بجٹ بنے اور ایسا بجٹ بنے کہ بندہ 2829 میں نہ دوبارہ اس پرابلم میں نہ آئے. تو پرابلمس لے رہے ہیں اور اسی لیے ہوتا ہے کہ جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے نا تو آپ کے پاس قریباً 2 ہفتے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ جو اسکول ہوتے ہیں عام انسان اپنی طرف سے بھی اس کو ایک ملتا ہے موقع کہ وہ ایک اپنا ای میل پہ بیچ سکتا ہے اپنی رائے, اور وہ رائے ساری کمونوں میں چلی جاتی ہیں اور وہ جاتی ہیں 2-3-4 نمبر تک. और वो चली गई हुई है, और आज आज डेड लाइन है एप्सिलॉन की, क्या कहते हैं, कमून की, और दूसरे बहुत सारे वेस्टर्न कमून की। जब वो जाएंगी डेफिनेटली उनको पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे कि कुछ कुछ आईडी देंगे लोग, कुछ कंपनियां देंगी, सब देंगी। उसके बाद में वो देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन सही है, इसमें से कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। पढ़ते हैं, उनको गौर भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, और सलाह मशवरा भी करते हैं, और आपस में बातचीत भी करते हैं। और डेफिनेटली टेबल पे तो बुलेरा बात है कि जब टेबल पे बैठते हैं तो बुलेरा चीज होती है, उसके अलावा भी आपस में बातचीत होती है। और इस वक्त मसला यही है कि इस साल 2027 के अंदर ये हुआ है कि जब ये नया रिफॉर्म इन रीजन का बनाया था, जब पांच रीजन से चार रीजन बने थे, तो फिर इनने कुछ जो आपके वो थे ना वो कमूनों के अंदर ले गए हैं। तो इसलिए इस बात ने थोड़ी बहुत क्या कहते हैं फिर वो चीजें भी इनने देखनी है, और सारा कुछ सिस्टम देखना है इनने। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला होपफुली बजट बनेंगे, और अल्लाह करे कि अच्छे
1: बजट
0: बने,
1: बनेंगे,
0: आपके लिए
1: बनते
0: बेहतर
1: रहेंगे।
0: बने।
1: तो अब आप दोनों से मेरा बराह रास्त सवाल है, आपको किस बजट में या इस बजट में कौन सी खूबी नज़र आती है और कौन सी खामी नज़र आती है, ये दोनों से मेरा सवाल है।
2: जी मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो इस बजट में जो मैंने मेरी नजरों से गुजरे हैं, जो मैंने तजिया नगारों से या अपना मैंने अखबारों में या आगे पीछे टीवी पे देखे हैं, अभी खसूसी तौर पे जो वेस्ट टाइम का जहां मैं एल्बर्ट रोड में रह रहा हूँ, इसका अभी फुली ओपन नहीं हुआ। मसला ये है कि जब माइनस आप जा रहे हैं, जब आपके पास इतना पैसा ही नहीं, तो फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे? स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट जो है वो हमें ब्लफ कर रही है, वो कह रही है मेरे पास तो ओवर स्कूल है और मैं दे रही हूँ, लेकिन कहाँ है वो पैसा? वो पैसा क्यों नहीं दे रही जो इन्होंने कम्यूनों से वापस दिया था, जो कम्यूनों का जमा है वो दे, ताकि लोगों पे इस बुरे वक्त में लोगों के काम आए। तो ये जो ब्लफिंग कर रही है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट और इससे अवाम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी है सियासत के अंदर, सियासत के अंदर ये होता है कि जो लोकल सियासतदान होते हैं वो अपनी गलियों का और अपनी वहां के रिहायशों की जो बजट है वो पहले ही पेश करते हैं। यानी कि अभी आपने अदनान से सवाल किया था, अदनान ने जवाब दिया है कि ये जो अभी जो फोर्स ले जाएंगी ये 27 के अंदर इसके ऊपर बहस होगी, और 28 में जाके इस पे कुछ चीजों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो बजट अभी आया है, ये जो बजट अभी ये सामने पेश हुए हैं, ये 25 के हैं, ये पिछले साल के हैं जो इनके इनके सामने आई हुई है कि भाई हमने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, यहाँ पे हमने स्कूल को इतनी मदद देनी है, यहाँ से हमने इतनी चीजों को आगे बढ़ाना है, ये पुरानी बिल्डिंगों कैसे, सड़कें कैसे,
1: ये सारी सारा कुछ जो है पिछले साल के। आपको ले आते हैं चूंकि आप अपोजिशन की तरफ से जो है वो अदनान है, वो हुकूमती जमात से उनका तल्लुक है, तो अगर शाह साहब आपको इस बजट में एक तब्दीली करने का इख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
2: मैं सबसे पहले जो यहाँ के अवाम है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा फैमिली जो है वो गुर्बत की से नीचे रह रही है, मैं सबसे पहले इस बजट में उनके लिए पैसा रखूंगा ताकि वो खुशहाली आए। खुशहाली सिर्फ इस वक्त हो सकती है जब आपकी जेब भरी हुई है, तो आप जाते हैं, आप दुकानों से भी चीजें खरीदते हैं, खुराक खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, तो वो पैसा जो है आप अपने कम्यून के अंदर खर्च करते हैं, तो उससे जो है वो सरमाया जो है उसका सर्कल जो है पिया उसका जो होता है वो सर्कल करने लगता है। मैं तो ये करूंगा कि जब तक अवाम के पास पैसा ना होगा, और उसको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा, अदनान इस पे बिल्कुल बात कर सकता है कि यहाँ के इस वक्त जो लाए बोली हैं इनके हूस लाए इतने ज्यादा हैं कि आप टैक्स कम पे कर रहे हैं और हूस लाए आपके डबल हैं, तो इससे जो है अवाम ज्यादा पिसकी है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा।
1: अदनान आपको कोई एक तब्दीली करने का अख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको दो दो मेन चीजें हैं जिन पे इनको फोकस देने की जरूरत है। ये है कि ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है ना, जिस तरह स्कूल से लेके स्कूल एजुकेशन को, इन दो चीजों पे इनको इतना कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है इनका और फ्यूचर में इनकी बहुत जरूरत है, तो इन पे गौर करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बच्चों को मसाइल हैं उनके लिए भी इनको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। दूसरा इनको ये करना चाहिए कि बुजुर्गों पे इनको और करना चाहिए कि बुजुर्गों को हेल्प देने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग
1: नहीं,
0: बहुत
1: अगर
0: सारे जो
1: आपको
0: हैं
1: एक तब्दीली
0: वो।
1: करने का अख्तियार मिले तो आप क्या करेंगे?
0: मैं सबसे पहले जिस चीज पे काम करना चाहता हूँ ना, और जो मेरी मैंने जो इलेक्शन में भी कहा था और सब लोगों को, वो ये है कि ये जो फ्यूचर में इन समझ है इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग जो है ना वो उनकी एक बहुत टफ जिंदगी गुजरी होती है, और आगे जो बुजुर्ग हैं वो खाली घोड़े की तरफ नहीं है, वो हमारी नेशनैलिटी के भी आएंगे, तो इनको एक तरफ करने है तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको फायदा होना है, क्योंकि लॉन्ग सेक्टर पे बुजुर्ग ज्यादा होने हैं और कोई ना कोई इनका क्या कहते हैं हल ढूंढना है, तो इस पे पिस्पाल से करना सबसे बड़ी स्ट्यूबर्ड बात है इस वक्त, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने जो अभी तक मेरी इल्म में आया वो यही आया कि 98 से 8 में से कम 70 लेकर 75 कमूनों तक उसके अंदर किसी ना किसी जगह पे इनकी पिस्पाल से जरूर है, ये मुझे समझ नहीं आई कि फवेलिंग में कौन बैठ के इस तरह की पिस्पाल से कर, मगर अब उनका आइडिया हम
1: चले,
0: तो
1: अच्छा शाह साहब आपकी
0: नहीं कह
1: तरफ
0: सकते।
1: आते हैं। शाह साहब, अगर इस मौजूदा बजट में आप हाँ करते हैं तो क्यों, अगर ना करते हैं तो क्यों? जी शाह साहब।
2: कि मैंने पहले ये कहा है कि मैं अग्री करता हूँ इजरान के साथ कि बूढ़े और बूढ़ों के साथ जो है ना वो फैमिलीज, जैसे कि अभी आपने देखा था फ्री ग्रोने के जो फॉर्मर है उन्होंने कोपनहेगन के प्लेटफॉर्म पे ये बात की कि 5,000 जो है वो बच्चे जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, इससे स्कूल भी अफेक्टेड होते हैं, इससे नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट होती है, हर एक चीज अफेक्ट होती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं फैमिली को देखा जाए, फैमिली को यहाँ पे आईन की एक बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है राजा साहब, वो ये है कि अगर आपके घर में आप दो बंदे रह रहे हैं, आप कमा रहे हैं, बच्चों वाला घर है, बच्चे सब अंडर 18 है, अगर मियाँ कमा रहा है और बीवी जो है वो बीमारी पे चली गई है तो उसको कम पैसे मिलेंगे इस वजह से कि उसका मियाँ कमा रहा है, और अगर वो दोनों पेंशन पे चले जाते हैं तो फिर एक औरत को जो है वो पेंशन कम मिलेगी और मर्द को ज्यादा मिलेगी, और इस तरीके से ये अफेक्टेड होता है, हालांकि दोनों ने बराबर का टैक्स दिया है, बराबर के हकूक होने चाहिए, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसी वजह से गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है डेनमार्क के अंदर, ये डेनमार्क वो था जिसका तोता पूरी दुनिया में बोलता था और यहाँ पे बहुत
1: लेकिन शाह साहब
2: हाईलाइट किया
1: दूसरी तरफ
2: जाता था।
1: देखें ना, सियासी पार्टियों के इख्तलाफात की वजह से बजट के आम आवामी मंसूबे जो हैं वो मुतासर होते हैं। ये अदनान से भी सवाल है।
2: जी मैं जरा इसके ऊपर ये सिर्फ यही कहूंगा क्योंकि हर कोई जो है वो नया आदमी है, जितने पुराने तजर्बाकार लोग थे वो तो हटके या वो पीछे बैठे हुए उनकी कौन सुनता है, ये यंगस्टर्स जो है ये सिर्फ
1: शाह साहब, इनको तो
2: अपने
1: ज्यादा मिसाइल का पता होता है।
2: नहीं जी, यंगस्टर को कोई मिसाइल का नहीं पता होता, ये जाते हैं और सो जाते हैं और यहाँ सुबह काम पे चले जाते हैं और अपने अपने मिसाइल को ये देखते हैं, इनको इनको कोई पता नहीं कि नेबर में क्या हो रहा है, बिल्कुल हकीकत है। अब इदनान जो है ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहा है कि ये खुद फैमिली वाला है और ये खुद यहाँ पैदा हुआ है, इसलिए इसको पता है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड में किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है,
1: चले,
2: इसके
1: आपका
2: हमसायों
1: जवाब
2: की
1: आ
2: क्या
1: गया
2: से
1: शाह
2: चल रही
1: साहब।
2: है।
1: अदनान, आप बताएं कि ये जो सियासी इख्तलाफात आपस में होते हैं, ये अवामी मंसूबों को फिर नुकसान नहीं पहुंचता?
0: रास्ता पहुंचता है, मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पहुंचता है कि अपने मसाइल जो होते हैं वो नहीं, मगर आप देखिए ना इस वक्त जिस तरह अब हम खाली लोकल नहीं कर रहे, हम पूरी सूरत हाल की कर रहे हैं, हम देखिए ना तो हमें ये देखना है कि किस चीज की इस वक्त जरूरत है और किस चीज की नहीं है। इस वक्त देखा जाए सबसे ज्यादा जो है ना अपने मसाइल साइड पे करके ये जरूरत है कि हम एक पेज पे आए और इन मसाइलों का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग अपना अपना देखेंगे ना तो हम इस मामले से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जो सलूशन जिसका शुरू से कहा गया है, हम लोग मैं और शाह साहब एपिसोड में रहते हैं, हमें कल तक तो मैं कह रही कि कल तक तो अंदाजा नहीं था हमें, ये कैसे ये सूरत हाल जाएगी, मगर अब थोड़ा बहुत हमें क्या कहते हैं अंदाजा होने लग पड़ा है, क्योंकि हमने टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि हम यार मसूफियत थी दूसरी जगह पे, मगर आज शाम को ही हमें पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, जब हम इन चीजों को बैठ के देखेंगे अब, क्योंकि अब हमें सारा एनालिस हो गया कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं है, तो वो फिर देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम जब पाकिस्तानी हो, तुर्की हो या डैनिश हो, इस वक्त हम बस ये देखें कि हमने किसके लिए कौन सी बेहतरी करनी है और कैसे हमने बेहतरी करनी है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप हैं, हमारे वाले साहब, हमारे पेरेंट्स भी हैं, सब हैं, हमें सबके लिए देखना है कि कौन सी चीज बेहतर है, क्योंकि हमें सबको पता होता है, मैं खुद कहता हूँ कि जब मैं पीछे जाऊं, एक साल पीछे जाऊं, टोकरी में मेरे, मैं खुद देखता हूँ, जो मर्जी इंसान हो, जितना मर्जी हो जिसके पास, उसकी टोकरी में कम चीज होती है। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि मसाइलों को हल करने की जरूरत है
1: मसाइलों को हल करना
0: और
1: चाहिए। अदनान, मेरा आखिरी सवाल
0: जो
1: है, टाइम में बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, फिर शाह साहब का पैगाम लेते हैं।
0: मैं आपको यही दूंगा कि आप लोग जो फैसला करेंगे, आप उस फैसले की कोशिश करना कि आप उसको सपोर्ट कर सकें। जिन
1: और
0: लोगों ने
1: कम्यून से
0: फैसला
1: क्या
0: इस वक्त
1: तवक्को
0: करने
1: रखते
0: में, आप
1: हैं,
0: जी
1: और साथ साथ कम्यून से क्या तवक्को रखते हैं।
0: मैं खुद इसके अंदर हूं, मुझे पता है कि वो अपनी तरह से हर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज कर सकें और क्या कहते हैं कि लोगों को सूरत हाल दे सके, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि आगे ना दी तो कौन सी, क्या कहते हैं, कौन सी तब्दीली होती है। और जैसे शुरू में हमने कहा था कि कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी के अंदर 33% लोगों का अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे दें, तो उससे एक सिग्नल मिल गया, तो लेस होप के बेहतर ही होगा कुछ।
1: शाह साहब, आप अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया भी अदा करें, और आप मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, क्या कहेंगे शाह साहब।
2: ये मैं अजान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा बच्चा बात करता है और बहुत खुशी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपना कीमती वक्त निकाल कर और हमें आवाम को जो है वो आगाही देते हैं। देखिए, इस वक्त बहुत सारे कानून जो हैं वो लॉ फोर्सेस जो हैं वो हैंडलिंग हो रही है ऑलरेडी, और जो आने वाले सालों में हमारे ऊपर लागू होंगे, हमें बड़ी सोच समझ के इन पे बात करनी चाहिए और हमें इसके ऊपर कोई क्विक एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि मैं जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शनल सियासतदान हैं जिनका मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर असर रसूख है या उनके मेंबर्स हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में होता है और दूसरे चार मुल्कों में, कि काउंसिल डिबेट जो है, कौन सा डिबेट होती है कि जो आपके कम्यून्स होती है उसके अंदर महीने में एक दफा जो है कम से कम वो जो है मुख्तलिफ फ्री बिली लोगों को बुलाकर उनकी डिबेट होनी चाहिए, ताकि वो आकर जो बजट आने वाले बजट है, आने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर वो राय ले सके। और ये इसलिए जरूरी है कि इससे आवाम की जो प्रॉब्लम्स है उनकी भी आगाही होगी और आगे चल के जो है जो कम्यून्स हैं वो अपने बजट में काफी बचत कर सकती हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एल्बरस्टोन के अंदर जो चंद साल पहले जो यहाँ पे चीजें होती थी वो अब उस नजर नहीं आ रही, और जब ये नजर नहीं आ रही तो लोग यहाँ से फिरौती करेंगे। अभी भी अदनान जाते जाते बता सकता है कि यहाँ 4,500 आदमी जो फैमिलीज हैं उनकी जरूरत है कि वो एल्बरस्टोन में आए ताकि यहाँ का टैक्स लेवल जो है वो पूरा हो, और इसी तरीके से ट्रांसटॉप और दूसरी जगह से भी लोग जो है वो फ्लुता कर रहे हैं, लोगों के पास जिनके पास गाड़ियां हैं जहाँ पे आप पार्किंग टिकट लगने शुरू हो गया है कि आप यहाँ पे ये करें, तो वो लोग आप मूव कर रहे हैं, वो छोटी छोटी कम्यूनों के अंदर शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने बजट को जो है वो नॉर्मलाइज कर सके। और ये बड़ी खुशानदा बात है कि अगर आपके पास कारें हैं, दो कारें हैं, एक कार है, तो आप शहर से बाहर रह रहे हैं, तो आपका बजट जो है वो काफी हद तक जो है वो आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए आसानी कर सकते हैं, बनिस्बत के आप 11-12 हजार, 14 हजार के किराए के मकान में सिटी के अंदर आप रहे, और वहां पे आप की इतनी पे नहीं है। अगर आप 28-29,000 टैक्स के बाद आप पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो उसमें 14,000 अगर आप टैक्स मकान का किराया दे रहे हैं तो आपके पास बचत क्या होगी। तो ये चीजें देखती हैं, तो आपने अपने पॉकेट को देख रहे हैं। तो मैं तो इस वक्त जो है सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। लेकिन अगली दफा जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे लॉ फोर्स को सामने लेके आएंगे कि जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे यंगस्टर जो है इस पे।
1: ये नाज़रीन हमारा काम जो है, नाज़रीन हमारा टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो हमारी लाइन कट गई। इन दोनों ने बड़ी मुफीद मालूमात दी, बड़ा अच्छा तजर्बा इनके पास, बड़ी अच्छी ये बात करते हैं दोनों और अच्छी मालूमात देते हैं। ये दोनों बहुत स्टडी करते हैं, ख़ासकर अदनान जो है बहुत चीज़ें करीब से देखता है, एनालाइज करता है, चूँकि तकरीबन ये काफ़ी बजट का ख़ुद भी हिस्सा रहे। तो शाह साहब जो है वो साला साल से इनको 50-60 साल से इनको इस चीज़ का तजर्बा है कि ये बजट और सियासी जमातें क्या करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब आपस में इख्तलाफात हो जाए तो फिर नुकसान जो है अवाम का होता है। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां नज़र आती हैं शहर के अंदर, बार भी नज़र आती हैं। आप किसी भी अवामी इत्मा में जाएं, किसी भी फंक्शन में जाएं, तो आपको लबास का आप देख लें, आप गाड़ियों को देख लें, इसी तरह रहन सहन को तो बंदा किसी के घर के अंदर नहीं देखता। लेकिन आप मार्केटों में जाएं तो देखें आपको शॉपिंग के लिए कोई कैद जो है काउंटर आपको खाली नज़र नहीं आता। ये भी एक सवालिया निशान है। जो थिंक टैंक पीछे बैठे होते हैं वो भी इन चीज़ों पर जो है वो गहरी नज़र रखते हैं। सामने नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मालूमात के हवाले से प्रोग्राम होता है, लोकल हमारा ये प्रोग्राम है, कम्युनिटी में जो कुछ होता है उसके बारे में हम अपनी राय मेहमानों से लेकर आपके सामने रखते हैं। तो इस वक्त आपकी आवाज के थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, तजर्बा कार हैं, सियासत को समझते हैं, कम्यून्स को समझते हैं, पार्लियामेंट को समझते हैं, कानून कायदे की बात करते हैं और टैक्सी ब्रांच में साला साल से इनका तजर्बा है। बहुत सारे इस ब्रांच में इनके शागिर्द भी हैं जो आजकल बड़े बड़े वॉन मैन बने हुए हैं। वो सारे काम कर रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से अच्छा काम कर रहा है और जो ख़बरें आपके साथ ये शेयर करते हैं या जो इनकी मालूमात होती हैं जहाँ से ये स्टडी करके आपके साथ शेयर करते हैं तो समझना आप ख़ुद भी तहकीक किया करें। ना ही कभी इनका दावा रहा है कि आप ये तहकीक ना करें, ना ही इन्होंने कभी कहा है कि आप सर्च ना करें। तो लिहाजा सीखना सिखाना एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इंसानियत की बात भी है, सीखना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब। शाह साहब एक बार फिर आपको अपनी टीम के साथ खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टनर और नाज़रीन सबको सलाम अलैकुम और पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी उम्मत जो है दुनिया में रहती है सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ये मुख्तलिफ डेट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, 12 रबी अव्वल से लेके 17 रबी अव्वल तक और बाद जो है वो इसके बाद भी मिलाद मनाते रहते हैं, घरों में मिलाद होते हैं। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और हर जगह जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं और मनाए लोग जो है वो मुख्तलिफ फिरकों से तलक रखते हैं और उनके अपने ख्याल के मुताबिक, उनकी अपनी आजादी के मुताबिक वो जिस दिन को चाहें, क्योंकि ये पूरा माह जो है रबी अव्वल का, ये हमारे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है तो यहाँ पे लोग जो है बड़ी खुशी मनाते हैं। तो आज भी एक जो काफी मुसलमान जो है आज भी 17 को ईद मिलाद मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं, कुछ आगे जाके मनाएंगे। तो हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं और अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में हमसे जो कबीरा सगीरा गुनाह हुए हैं वो माफ करे और हमारे जो साथी और माए बहने और बच्चे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और ये सबके लिए दुआ है और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है, बेहतर करने वाला है। राजा साहब, आज मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द है, इतना भी सर्द नहीं लेकिन 18 19 20 तक डिग्री तक गर्मी है लेकिन बादल छाए हुए हैं। शाम को भी काफी बारिश हुई, कल कहीं कहीं बारिश बादल आ जाती हैं, टुकड़ियां आ जाती हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है लेकिन अब ऐसा मौसम शुरू हो रहा है जो जिसको हम अपनी पंजाबी जबान में पतझड़ का मौसम कहते हैं। ये पतझड़ का मौसम जो है ये सितंबर में शुरू होता है और अक्टूबर तक जाता है और ये जो मौसम है इसके अंदर जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी उल्विकलिंग होती है, यानी कि हमारे अंदर भी जो जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, यानी कि हमारे जितने भी जोड़ हैं उनके अंदर जो रेशे होते हैं उनकी तब्दीली आती है, जिस्म में तब्दीली आती है और बकायदा बाज लोगों को खांसी लग जाती है, बाज को रेशे की बीमारी हो जाती है, जुकाम की बीमारी हो जाती है। लेकिन ये बीमारियां नहीं, ये वो जरसूम है और वो चीजें हैं जो बाहर निकलती हैं जो इंसान के अंदर जमा होगी होती है और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत है कि जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन खा कर या इंजेक्शन लगवा कर अपने अंदर इन चीजों को जमा कर लेते हैं और ये सुनने और देखने में सुनने में आया है कि जो एक्सपर्टीज हैं वो ये कहते हैं कि ये कैंसर का भी सबब बनते हैं। लिहाजा जो कुदरत की तरफ से जो पतझड़ आपके जिस्म में आया है उसको बाहर निकलने से मत रोकिएगा। हाँ, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर जो है वो मशवरा करें और जो मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे उसका इस्तेमाल करें। لیکن اتنے بھی کم کپڑے نہ پہنے اور خصوصی طور پہ گاڑی کا جو ٹمپریچر ہے ایئر کنڈیشن ہے اس کی دیکھ بھال ضرور کریں, اور باہر کے جو اس وقت پتے ہڑ کے زمانے میں اگر آپ کسی سائڈ اسٹریٹ پہ جا رہے ہیں, کسی جنگل سے گزر ہو رہا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہے یا کچھ, تو آپ جو سڑک کا ماحول ہے اس کو ضرور دیکھیں, کیونکہ پتے جو ہوتے ہیں جب یہ سڑک پہ گر جاتے ہیں تو یہ برف سے بھی زیادہ خطرناک سلپری ہوتے ہیں, اور یہاں پہ بریکیں جو ہیں وہ بعض اوقات کام نہیں کرتی, تو لہٰذا آپ کو بڑا احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ 60 کلومیٹر پہ جا رہے ہیں تو 50-55 پہ جائیں تاکہ بریکیں جو ہیں وہ گاڑی جو ہے وہ اپنے وزن کے حساب سے بریکوں کو کنٹرول کر سکے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. جی راجہ صاحب آپ کا کوئی سوال؟
1: شاہ صاحب آپ معلومات کی بات کر رہے ہیں, موسم کی بات کر رہے ہیں, ذرا پہلے لے لیتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے ذکر کیا عید میلاد النبی کا, تو بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں, جاری رہیں گے, سپٹمبر میں بھی لوگوں نے ڈیٹیں دی ہوئی ہیں, ہم سے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے, جانے کا موقع بھی ملتا ہے, سننے کا موقع بھی ملتا ہے. کل بڑی ہم نے علمی گفتگو سنی مکی مدنی مسجد میں, جو ہے مدنی مسٹر برو کلچرل انسٹیٹیوٹ میں, بڑا اچھا پروگرام تھا, ہاؤس فل پروگرام تھا, بڑی علمی گفتگو سننے کا موقع ملا. اسی طرح اور دوسرے علماء بھی بات کرتے رہتے ہیں, جہاں جہاں کسی سینٹر میں یہ علمی گفتگو ہوتی ہے سننے کا موقع اگر ملتا ہے یا کسی کو بھی ملتا ہے, تو شاہ صاحب ایک بات سامنے آتی ہے کہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, عاشق رسول ہیں, لیکن شاہ صاحب جس قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں, جو ان کی تعریف میں ہم باتیں کرتے ہیں, یا علماء بات کرتے ہیں, سنی کرتے ہیں, شیعہ کرتے ہیں, سنی فرقے کے فرقے تو آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے بنا لیتے ہیں, تو شاہ صاحب اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فرمایا, جو علماء فرماتے ہیں, تو شاہ صاحب اس پر عمل کرنے کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟
2: عمل جو ہے اس کی ہدایات جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی ہم لوگوں کو بتا دی تھی کہ آنے والے صدیوں میں آنے والے جگہ پہ آپ کو مختلف کتابیں پڑھائی جائیں گی, آپ کو مختلف ایسے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو غلط, مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے اس کو آپ کو غلط حدیثیں بتائیں گے اور کافی باتیں کریں گے. اس سے یہ بات ہوگی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چند دنوں کے لیے اگر میں نے کوئی ایسا کرائم کر لیا, ایسا جرم میں نے کر لیا ہے, تو وہ میں چند دنوں کے لیے جہنم میں جاؤں گا, لیکن اس کے بعد مجھے وہاں سے نکال لیا جائے گا اور میں واپس جنت میں چلا جاؤں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید جو ہے اس کی بالکل اپوزٹ نشاندہی کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ویسی کتابیں نہ بناؤ جیسے عیسائیوں نے بنائی, یہودیوں نے بنائی, اور اپنے مختلف اسکول آف تھاٹس اپنے فرقوں میں آپ بٹ کے. تو اس چیز پہ سورۃ البقرہ کو آپ شروع کریں تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ چیز یہی ملے گی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ستارہ شناس ہیں, یہ جو علماء ہیں جو میرے آیات کو پڑھ پڑھ کر بیچتے ہیں, اور یہ جو ان سے کمائی کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ سب فرقوں میں ہے, یہ کسی ایک فرقے میں نہیں ہے, سب اسکول آف تھاٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہے, اور اسی طرح وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پہلے جو فرقے تھے ان میں کیا غلطیاں پائی جاتی تھی, وہ کس طریقے سے, وہ بھی مسلمان تھے لیکن وہ کس طریقے سے بدل گئے, کس طریقے سے وہ انہوں نے اپنے مختلف فرقوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا, اور کس طریقے سے وہ اپنے دینوں سے ہٹ گئے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ہر دفعہ ہے وہ بالکل اپنے نبی کو مانتے تھے, اپنے رسول کو مانتے تھے, اور وہ ان کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو بشارت کی ہے قرآن مجید کے اندر, نشاندہی کی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے, اور باقی سب کو میں دوزخ کا جہنم کا ایندھن بناؤں گا.
1: شاہ صاحب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یا اعلامی کتابیں ہیں, اللہ پاک کی کتابیں ہیں, جو جو اتری جن جن رسولوں پر اتری, تو ان کا جو اصلی مقصد تھا وہ سب کو سٹڈی ہونا چاہیے, ایک ہی اللہ ہے تو اللہ کی طرف سارے رجوع کرتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ تو علمی گفتگو کی بات ہو رہی تھی, یہ تو بہت بڑے بڑے علماء ہی بات کر سکتے ہیں, ہم تو تو نشاندہی کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں جواب سننے کے لیے۔ تو شاہ صاحب، موسم کا آپ نے ذکر کیا، بیماریوں کا اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی بتاتے رہتے ہیں، ٹیکسی برانچ کا ذکر کیا، چونکہ یہ ہمارے لوگ کافی محنت کرتے ہیں، صبح صبح 5 بجے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور شام تک یہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شاہ صاحب، اگر سڑک پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ٹریفک کا یہ حال ہے کہ آپ 15-15 منٹ جو ہے ایک چوک میں کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح موٹر وے پہ بھی کافی دیر چھٹی کے ٹائم جو ہے لمبی لائنیں، میلوں لمبی لائنیں نظر آتی ہیں، کچھے کی طرح گاڑیاں موٹر وے پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو شاہ صاحب، کمیون جو ہوتی ہے، کوپن ایگن کمیون کی پارلیمنٹ ہے، اسی طرح کوپن ایگن کی جو کمیون کو اس کو پارلیمنٹ کے ممبر بھی کہا جاتا ہے، کوپن ایگن کی ہوتی ہے، تو وہ دوسری کمیونوں کو شاید یہ اعزاز نہیں ملتا، باقی بھی ساری پارلیمنٹ بنی ہوئی ہیں۔ تو شاہ صاحب، ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہمارے سٹی کونسلر جو بھی آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ تو شوق سے تو ہم آ جاتے ہیں اور اس پر ووٹ بھی لے لیتے ہیں، ماما چاچا کر کے، تایا بھتیجا کر کے، بھائی جان کر کے، انکل کر کے، تو ووٹ بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، سٹی کونسل کی ہوتی ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی طرح ریجن کے ممبر ہوتے ہیں، بڑا بہت بڑا کام ہوتا ہے، پڑھا لکھا کام ہوتا ہے، باقی کمیٹیوں کا بھی کام ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب، جب یہ ساری چیزیں پہلے پتہ ہوتی ہیں، تو جب یہ سارے لوگ بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لوگ جو ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بھی 10 بندے اکٹھے کر، 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شاہ صاحب، یہ آنے سے پہلے سوچنا چاہیے یا بعد میں سوچنا چاہیے؟
2: جی، آپ نے ایک بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی سخت قسم کا سوال کیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ پہلے سوال کیا جانا چاہیے یا بعد میں، یہ تو پہلے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کے اندر جس کی اس کی مادری زبان جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں، اس کی سیکنڈ زبان ہے۔ ہمیں یہ سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی فارنرز ہیں، ہماری سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ ڈینش ہے۔ بے شک ہم یہاں سکولوں میں جاتے ہیں، بے شک ہم ڈینش بولتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ ہماری مدر ٹنگ وہی ہے جو ہمارے ماں باپ کی ہے، جو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم ذہنی طور پہ ہم قبول کرتے ہیں، وہ ہماری اصل زبان ہے، وہ نمبر ون زبان ہوتی ہے۔ تو یہ جو دو زبانوں والا مسئلہ ہے، اس کو بھی حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو پرابلمس ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکے ابھی تک کہ جو آئین ہے ڈنمارک کا، جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے قانون کیا ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو قانون پارلیمنٹ بنا رہی ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کا حصہ ہے یا آئین کا ایک ذیلی حصہ ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ ہم فیصلے جب دیتے ہیں، جب ہم کسی چیز پہ بات کرتے ہیں، اگزامپل آپ نے کوپن ہیگن کی بات کی، تو کوپن ہیگن ایک بڑی سب سے بڑا ہمارا دارالخلافہ ہے، اور یہاں پہ ہماری پارلیمنٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے، بڑی بڑی منسٹریز ہیں۔ تو یہاں کے جو کوپن ہیگن کی جو کمیون ہے، اس کا فرائز جو ہیں وہ دوسری کمیون سے بہت بڑے ہیں۔ وہاں پہ سب سے پہلے جو کونسلر آتا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے حلقے سے، کن لوگوں نے اس کو چنا ہے، ان کی کلاس کیا ہے، ان کے اندر کون سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی پرابلمس کیا ہیں، کیا ان کو ہاسپٹل کی پرابلم ہے، اسکولس کی پرابلم ہے، سڑکوں کی پرابلم ہے، پارکنگ کی پرابلم ہے، ان کو پیسوں کی پرابلم ہے، کیا چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس کو رکھنا چاہیے۔ پھر اس کی ایک فورس لے بنا کر اپنی پارٹی سے، اپنی بال ایز جو اس کی پارٹی کا جس حلقے سے وہ الیکٹ ہوا ہے، ان سے بات کر کے اپنی پارٹی میں اس کو منظور کرا کر اس کو یہ چیزیں آگے پیش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے دوسری پارٹیوں کے لیے، جو دوسری پارٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بالکل اس کی مخالفت کریں گی کہ یہ کہاں سے لے آئے یا اس قسم کی فیصلے، تو اس کو آئین کو سمجھنا چاہیے، اور وہ آئین کو بیس بنا کر ان کو ایک شٹ اپ کال دے سکتا ہے، ان کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ اپنے لوگوں کی پریزنٹیشن پیش کرے گا۔ اس طریقے سے तो उसके पांव मजबूत हो जाएंगे और वो अपनी बात जो है वो समझाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद बनाए, तनकीद करना शुरू कर गए, बहस पे ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे, उस बहस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको समझा सकें, तो वो बिल्कुल होगी। अब आपने जैसे बात की टैक्सियों की, पार्किंग की, तो कोपेनहेगन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है वहां पे मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं वो है वर्कर, और उनमें ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, उनमें टैक्सी ड्राइवर भी हैं, बस ड्राइवर भी हैं, और बहुत सारे हैंड वर्कर जिनको हम कहते हैं मसलन हाथ से काम करने वाले मुस्लिम मजदूर और लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में, अपनी वाहनों में वो सफर करते हैं, उनके लिए पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, सड़कों की भी प्रॉब्लम है, उनके उनके काम करने के औकात में जब वो जाते हैं, मुख्तलि वक्त में वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है कि वो राइट टाइम पे जो है वो किसी अपने एक मकाम पर पहुंच के वहां काम शुरू कर सके, और अगर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनको पार्किंग मिलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीजें जो है, तो इसको इसके लिए जो काउंसलर हजरात हैं उनको चाहिए, उनको चाहिए कि ऐसे वर्कर्स जैसे पुराने वक्तों में होता था कि जो वर्कर जो ऐसे किस्म के जैसे वीवीएस वर्कर है जिसके लिए कि बहुत जरूरी है, आपका बाथरूम खराब हो जाता है, टॉयलेट खराब, कोई चीज ऐसी हो जाती है, वीवीएस को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आपके कोई विंडो टूट गई है शीशे वाले को बुलाते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल टिलेंस इजाजतनामा होना चाहिए ताकि वो जहां अपनी गाड़ी खड़ी करे, अगर वो गल ऐसी जगह पे पार्क कर दी है जहां पे उसको जुर्माने का खतरा हो तो उसको जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो एक काम करने के लिए आया है, एक मिशन पे आया है और वो अपना काम करके जा रहा है और लोगों को सहूलत देता है। तो गवर्नमेंट इन चीजों पर नहीं सोच रही, गवर्नमेंट ने जो है जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ एक ही रट लगा ली है, ख्वाह वो कम्यून हो या पार्लियामेंट, वो ये कहती है कि हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है कि लोग मायूस हो जाएं, आपस में लड़ना शुरू कर दें, आपस में जो है वो आप देखें जब सड़कों पे आप जाते हैं लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि वो तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको बिल्कुल ये परवाह नहीं होती कि मेरा लाइसेंस चला जाएगा, मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, मैं किसी को मार दूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कोई मार देगा थोड़ी सी गलती से, कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचता, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे होते हैं, फिर वो घर में जाते हैं तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने अगर वो शादीशुदा है तो बीवी बच्चों पे या अपने फैमिली पे निकालते हैं। तो ये चीजें जो है ये समझने के लिए सबसे पहले ये जो छोटी पार्लियामेंट जिसका आपने जिक्र किया है ये कम्यून होती है, और कम्यून का काम है कि वो इन लोगों को बोल है जिसको हम कहते हैं यानी कि सुकून की गोलियां दे, इनके लिए ऐसे प्रोग्राम लेके जाए, ऐसी फोर्स लेके जाए जो इनको अमन के रास्ते पे लेके जाए तो ये खुशहार हो। अगर आप दुनिया भर की जो अखबारें हैं या दुनिया भर की जो मीडिया हैं या जो भी चीज है उसको अगर आप देखें तो उसमें लिखा जाता है कि डेनमार्क दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल मुल्क है। तो इसके इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खुशहाल था उसको इन्होंने बदहाल कैसे कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी कोपेनहेगन कम्यून और दूसरी कम्यूनों से निकलती हैं, जहां पे वो सिर्फ अपने लॉबीज के लिए काम करते हैं और वो अपने लोगों के लिए अवाम के लिए काम नहीं करते। वो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो हमारे हमारे मकसद की चीज नहीं, हम चले जाते हैं। देखिए आप मोस्टली काउंसलर से बात करें जो फॉरनर काउंसलर हैं तो वो ये कहेंगे जी हमें प्लाईएम चाहिए, हमें नमाज के लिए जगह चाहिए, हमें जो है वो जो है थोड़ी सी सहूलतें चाहिए। ये वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी तालीम है, उनको स्कूलों के अंदर ये कानूनों के जब वो तीसरी चौथी या पांचवी क्लास में इस काबिल हो जाते हैं, बच्चे काबिल हो जाते हैं, उनको उनको महीने में एक दफा यहाँ के आईन और यहाँ के कानून के बारे में वहां पे लोगों को दर्श देना चाहिए, उनको उनकी क्लास होनी चाहिए ताकि सब स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो ये सुन सकें कि डेनमार्क का कानून क्या है और यहाँ क्या क्या चीजें हैं और बच्चे उसके ऊपर सवाल कर सके, जैसे कि ये करते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं और बच्चों को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह अगर ये कानून के बारे में सियासतदान जाके उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दें, उन मासूम लोगों को बताएं कि आपकी इस गलती से आपकी जिंदगी कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो वो बच्चे जो हैं वो अल्कोहल भी पीना छोड़ देंगे, वो ये जो अपना कैसीनो टाइप मशीनें लगी हुई हैं इनको खेलना छोड़ देंगे, रात को जो बाहर जाके वो 6-7 बजे के बाद वो प्रॉब्लम खड़ी करनी शुरू करती है, मेन स्टेशनों में चले जाते हैं, सेंटरों में चले जाते हैं और ग्रुप की शक्ल में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ये घरों में बैठ के अपने आप को चलने की बकायदा एक तरबियत होनी चाहिए, जैसे कि अभी पूरे यूरोप के अंदर है कि बच्चा जो है आप 15 साल से छोटी उम्र के बच्चों को किसी सूरत भी आप मोबाइल ना दें, इंटरनेट ना दें। हमारे लोग जो हैं घरों में चले जाएं तो वहां पे इंटरनेट ही इंटरनेट लगा होता है, टीवी लगा होता है, कार्टून्स लगे होते हैं, उससे बच्चा जो है वो खेलने से बाहर जाके मैदान में खेलने से बजाय अपने दोस्तों के साथ बात करने की बजाय वो उसी तरह अग्रेसिव हो जाता है जैसे कि वो एक कार्टून्स को देख रहा है या दूसरी चीजों को। तो जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपने काफ़ी तफसील से बताया, सारी चीज़ों का अहाता किया। शाह साहब बहुत सारी सोसाइटियां बन जाती हैं, कमेटियां बन जाती हैं, सियासी जमातें बन जाती हैं, मजहबी अदारे बन जाते हैं, मसाजिद बन जाती हैं, तो शाह साहब लोग हर जगह डिवाइड हो जाते हैं। कभी कोई कहता है जी फलां जो मजहबी अदारा है उसकी मालकियत किसके पास है, लगता है कि वो सारे कहते हैं ये अवाम के हैं, ये सब लोगों के, सब लोगों का चंदा है। लोग कहते हैं जी महसूस होता है कि पता चलता है कि किसी फ्राम बरादरी की हुकूमत है इसमें, किसी फ्राम बरादरी की हुकूमत है। जहर है हर सिस्टम को जो है वो कमेटियां ही शाह साहब चलाती हैं। डेनमार्क का तो सिस्टम यही कहता है, कानून कायदा यही कहता है कि यहाँ सिस्टम से और कमेटियों से ही जो है वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जो बाहर चंदा या वोट देने वाले बाहर आते हैं तो सारी जो अवाम जो है उसकी मेम्बर होती है, जो पेड मेम्बर होते हैं, असल में वोट डालने के हकदार तो वही होते हैं जो पेड मेम्बर होते हैं, जो क्लेम कर सकते हैं जी मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। लेकिन शाह साहब ये एक जहलीत होती है जो अच्छे काम को भी जी कहना शुरू कर देती है, जी फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ ने हुकूमत बना ली, फ़लाँ बरादरी इस पर काबूज है, तो शाह साहब ये भी एक जहलीत की निशानी है। जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, शाह साहब क्या मेम्बर बन के ही खिदमत की जा सकती है? मेम्बर बने बगैर भी तो खिदमत की जा सकती है। उसके अलावा शाह साहब सियासत की जब आप बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, तो हमारे जो कानून कायदे बनते हैं वो तो कम्यून के अंदर बनते हैं, ऊपर जो पार्लियामेंट जो है जिसे फलके सिंह कहते हैं वो तो कानून की जो है वो डिबेट्स होती हैं, जब कानून तय आ जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं कम्यूनों में जाकर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो शाह साहब हम कोई सियासी इतजाज भी हमारे लोग नहीं करते, क्रिटिसाइज सिर्फ करना चाहते हैं, करना जानते हैं, जगह जगह आपको सड़कों पर सुराख मिलेंगे। शाह साहब ये वो मुल्क है, इसका बेसिक जो समझ आ रही है हमारा ये मुल्क जो है कि टैक्स होगा तो ये सहूलियात मिलेंगी, अस्पतालों में सहूलियात मिलती हैं, ये में यल्पा की सहूलियात मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट की जो मजदूरों की है उसकी सहूलियात मिलती है और भी बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, ये सारा टैक्स से निज़ाम चलता है, अस्पतालों के अखराजात होते हैं, तो इनकम जो होती है जो कहते हैं ज़र मुबादला होता है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं टैक्स और बात पे। शाह साहब ये निज़ाम में आसानियाँ किस तरह पैदा की जाए? ये वही निज़ाम था जब आप लोग आए थे शुरू में, उस वक्त बहुत आसानियाँ थी, अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तो लेकिन अब सख्तियाँ ज़्यादा हैं। जी शाह साहब,
2: जी आपने बिल्कुल राजा साहब दो सवाल किए हैं और दोनों के जवाब जो हैं वो ये है कि जब आप एक मस्जिद की या एक नमाज वाली जगह की आप बुनियाद रखते हैं तो वो अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह के घर के अंदर जो है सफाई रखना जो है वो हर मुसलमान का फर्ज है, वहां वो किसी भी फिरके से तलक रखता हो, किसी भी जमात से तलक रखता हो, वो आए, हर मुसलमान का फर्ज है कि अल्लाह के घर को जो है उसमें ये कोई नहीं कि ये चौधरी है, ये शाह है, ये आगे जाके बैठेगा, मुझे पीछे बैठना है, ये फलाना गांव में इतनी इसकी हैसियत नहीं, ये हमसे आगे कैसे बैठ गया, इसने मसल्ला खरीदा हुआ है, ये इसके मसल्ले का नाम लिखा हुआ है, ये देखने में आता है। तो ये चीजें जो है अल्लाह के घर में नहीं होती, इससे जवाल पजीद होते हैं लोग, और ये कुरान मजीद की और सुन्नत की हदायत आया है, इसके अंदर आप इसको इसकी वायलेशन नहीं कर सकते। सब लोग जो है हर मस्जिद जो है ना कोई मक्की मस्जिद है, ना कोई मदनी मस्जिद है, ना ही कोई शिया मस्जिद है, ना कोई मस्जिद। ये सब मस्जिद होने चाहिए अल्लाह के नाम पे। इसमें हर फिरके के बंदे को जब दिल चाहे, जहां जिस वक्त दिल चाहे, वो आकर अल्लाह के नाम की तलावत कर सकता है, कुरान शरीफ पढ़ सकता है, वहां पे अपना अपनी इबादत कर सकता है अल्लाह के हजूर में। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ना उम्मीद हो जाता है और वो चाहता है कि मैं अल्लाह से रजू करूं और अल्लाह के पास जाऊं, तो मस्जिद को हर वक्त खुला होना चाहिए। वहां पे जाके वो उलमा दीन से बात कर सकता है। और ये जो सवाल जवाब है, इनके जवाब देने जो है जितने भी आलम हैं, मौलवी हैं, उनके उनका फर्ज बनता है कि वो उसको सेटिस्फाई करें। अगर उसके सवालात इतने बुरे भी हैं तो फिर उसके बावजूद भी उसको उसके सवालों के उसको जवाब दिया जाए ताकि वो मुतमिन हो सके। अल्लाह के घर में हर आदमी को वेलकम होना चाहिए और यहाँ पे नहीं। दूसरा सवाल आपने किया, देखिए यहाँ पे हम लोगों में अभी तक 70 से लेके 90 तक जब हम यहाँ थे तो हमें मैं नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2000 तक हमें मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमें मैं आनी शुरू होगी और हमें रेस शुरू होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सरमाया कौन लगा रहा है, शादियां कौन कर रहा है इतनी बड़ी, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कहाँ गाड़ी करनी है, किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसके पास छोटी गाड़ी है, किसी तरीके से भी सरमाया आ रहा है तो उसको आना चाहिए। हमने, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी 15% ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी अभी भी हलाल को एक साइड पे करके हराम को तजरीह देते हैं। देखिए हराम जो है वो सिर्फ उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी को इंतहाई खतरा हो। वहां पे आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इजाजत दे दी है कि आप अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठे गए के करीब हैं तो आप भूख से मर रहे हैं तो आप वहां थोड़ा सा सूअर खा लें, तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप अपना पेट बांधें, सिर्फ ये कि आप सरवाइव कर जाए। इसी तरह से शराब या किसी दूसरी चीजें जो अल्लाह ताला ने खून वगैरह आराम किया है तो उससे अगर आपकी सर्वाइवल हो जाती है तो ये उसके लिए है। लेकिन फिर हमारे लोग जो है इसको परमानेंट अगर एक चीज बना लेते हैं जैसे कि दूसरी कौमों ने बनाया तो वो अल्लाह ताला ने मना किया है। अब आपका जो सवाल है उसके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों के पास जिनके पास इल्म है उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया जाता है, उनकी उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मसाइल उठ खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे मसाइल उठते हैं कि जिसका लोग जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि ये इस जमाने में भी हमारे लोग जो हैं वो नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक के जो है वो सवाल जवाब करते हैं और ये इनको इसलिए करते हैं कि इनके पास बुनियादी तालीम नहीं है। सिर्फ कुरान को पढ़ लेना जो है अरबी में उससे आपको समझ नहीं आती, आपको उसकी जो उर्दू जबान है या आपकी जो तुर्की जबान है, किसी भी जबान जो भी आपकी मादरी जबान है उसके अंदर आप उसको पढ़े तो आपके जो दिमाग है उसको वो हासिल कर लेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर बंदा जो है वो हिफ्ज़े कुरान नहीं हो सकता, हर आदमी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर से दूसरी चीजों में नहीं जा सकता। ये चंद एक पासियत लोग होते हैं जिनके पास ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शैतानी इल्म होता है। आप ये देखिएगा कि शैतान के पास इतना ज्यादा इब्लीस के पास इल्म था कि वो सातवें आसमान पे गया था, अल्लाह ताला ने उसको सातवें आसमान पे बुलाया था। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इब्लीस के पास इब्लीस ने कोई अपना इल्म बनाया था, उसके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ने ही उसको अता किया था, जिस तरह हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया है। तो हमें कुरान मजीद से इल्म लेके और सुनते रसूल पे चलते हुए हमें चलना चाहिए, ना कि हम दुनिया की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ के तो उनकी तो कहानियों पे हम
1: देखे ना। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इनका अपना जो आइन है या इनका अपना निज़ाम है और जिसके बारे में उलमा ने और संजीदा लोगों ने कहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहाँ आप रहते हैं उस कानून कायदे का एहतराम करें। तो शाह साहब यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, یہاں جو نظر آتا ہے اگر ہم اس پہ بھی تنقید کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کو منع بھی نہیں ہے تنقید کرنا، لیکن شاہ صاحب جمہوری نظام یہ نا ایک بنا ہوا ہے کہ ایک کے پاس 9 ووٹیں ہوں گی، ایک کے پاس 8 ہوں گی، 9 والا جو ہے وہ جیت جائے گا، چاہے جو کچھ بھی ہم مرضی کہتے رہیں، جو 9 والا ووٹ والا وہی جیتے گا، یہ ہے جمہوریت، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب دیکھیں سالہ سال سے برطانیہ بہت ایڈوانس ہے، بہت پہلے لوگ وہاں آئے، یہاں ڈنمارک میں 70-71-69 میں لوگ آئے، اب تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو شاہ صاحب اب نظام میں تبدیلی ہونے چاہیے، بندے کو خود سیکھ جانا چاہیے۔ کل ہم نے دیکھا کہ لوگ کم کہتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشن کرنا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے، اجازت لی جاتی ہے، ڈیمونسٹریشن کی جاتی ہے۔ برطانیہ کی ایک خبر چل رہی تھی جس میں صرف میں اس لیے بات کر رہا تھا چونکہ یہ لوکل خبر بنتی ہے، پاکستانیوں کی خبر ہے، مسلمانوں کی خبر ہے۔ تو شاہ صاحب انگلینڈ جیسے جمہوری ملک میں رہتے ہوئے اگر اجازت ملی ہے ڈیمونسٹریشن کرنے کی، کوئی آدمی ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے اس کی کلاس کتنی ہوتی ہے، کہ ڈیمونسٹریشن کرنے والے کی سوچ کتنی ہے، وہ پیسے لے کر ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے یا خود جمہوری نظام کے لیے حق لینے کے لیے کر رہا ہے۔ تو کچھ شاہ صاحب ایک سید صاحب ہیں پڑھے لکھے ہیں جن کا تعلق اوورسیز سے ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ کافی ویڈیو پر جو وائرل ہے، ایک بندہ ہے جس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناپسندیدہ شخصیت ہے بقول لوگوں کے، دوسری طرف جو ہے ایک پڑھے لکھے سید ہے جن کا تعلق جو ہے اوورسیز کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی گالیوں کی پتہ نہیں وہ اصلی ویڈیو چل رہی ہے یا کہ بنائی گئی گالیاں وہ دے رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب ان چیزوں کو جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، 1400 سال پہلے ہمیں غلامی سے آزاد کر دیا، ہم سوسائٹیوں کے غلام، تنظیموں کے غلام، سیاسی جماعتوں کے غلام، اب اپنے ملک کی حکومتوں کے غلام، جو ہمیں پوسٹ دیتا ہے ہم اس کے غلام۔ جی شاہ صاحب
2: جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں آزاد پیدا کیا گیا تھا رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اپنے نبوت کا، اپنی نبوت کا نہیں رسالت کا، نبی تو وہ پیدائشی تھے، رسالت کا آپ نے اعلان کیا 40 سال کی عمر کے، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی اور رسول بھی ہوں، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو کتاب لے کے آتے ہیں اور اللہ کی کتاب، اور آپ نے آخرت کا، تو آپ نے سب سے پہلے دو چیزیں ختم کی تھی، ایک لونڈی ختم کی تھی اور ایک غلام ختم کیا تھا، اور آپ نے سب سے پہلے، آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے حبشی نے جنہوں نے اذان دی تھی، مجھے رستہ فارس اللہ بھی ان کا نام ذہن سے ایک دم نکل گیا، تو انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پاس سے پیسے دے کر آزاد کرایا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی اسلام ہے جی، وہ بعد میں شرابیں حرام ہوئی اور بعد میں غلام جو ہے وہ آستہ آستہ لوگوں کو اس طرح موٹو کیا گیا اور یہ چیزیں بعد میں ختم ہوئی، یہ جہالت کی سب سے بڑی اور یہ دشمن کے ساتھ ملاوٹ کرنے کی اور مل جانے کی سب سے بڑے ثبوت ہیں، جس کے اندر انہوں نے ہر ایک چیز وہ کی جو صرف ہم کلمہ پڑھ کے باقی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے اللہ کی دی ہوئی کتاب جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی بات کی، میں ایک مختصر یہ چیز بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ انگریزوں نے، انگلینڈ بڑا ماڈرن تھا، 1942-43 کی وار کے بعد یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، ڈمالش ہو گیا تھا، اس کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت تھی، ان کی عورتیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، فحاشی بڑھ چکی تھی، مرد بہت کم تھے، جنگ میں مارے جا چکے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت کے ہندوستان سے انہوں نے شپ بھر بھر کے، آپ ابھی بھی لائبریری میں جا کے ان کی خبریں نکال سکتے ہیں کہ انگلینڈ میں جب وہ جہازوں سے اترتے تھے، خواہ ان کو پنجابی آتی تھی، سندھی آتی تھی، جو بھی زبان آتی تھی، انگریزی نہیں آتی تھی، ان کو گوریے پکڑ پکڑ کے ویلکم کر رہے تھے، تو ان کے گھروں کو، ان کو بنایا گیا، ان کے ملک کو جو ہے وہ تحفظ دیا گیا، اور آج انہوں نے انہی لوگوں کو لے کے تو ہمارے ملک کو جو ہے اس کو غلام بنا دیا ہے۔ اب یہ ہمارا ملک ہی وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ دین جو ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، قطر میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آپ کو 3-4 فرقے نظر آئیں گے۔ پاکستان وائز ایک ایسا ملک ہے اور انڈیا جہاں سب سے زیادہ فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے فرقے ہیں کہ جو एक मस्जिद में भी पूरी नहीं कर सकते, तो मस्जिद के साथ ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। अंग्रेज
1: चीजें डेनमार्क में भी हैं,
2: अब यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल यही सिलसिला यहाँ चल रहा है। यहाँ पे जब हम इन लोगों ने हमें लाए थे तो उस वक्त सबसे बेस्ट नेशन जो थी इनके हिसाब से वो मुसलमान थी, क्योंकि 57-58 में यहाँ इन्होंने यहूदियों को इसराइलियों को आबाद करने की कोशिश की थी दूसरे ममालिक से, तो उन्होंने यहाँ पे वही करप्शन के और दूसरे हालात पैदा कर दिए। यहाँ पे हर चीज वगैरह हर एक चीज इनके मुल्क के आईन के खिलाफ चलनी शुरू होगी।
1: तो फिर इन्होंने क्या किया, बार बार हम जिक्र भी करते रहते हैं शाह साहब, हम सारी चीज आपको हमें या दूसरों सबको पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करनी गुनाह है, तो शाह साहब ये इल्ज़ाम हम क्यों नहीं देते कि हमें ट्रंप ने कहा कि गीबत किया करो या नतन्याहू ने कहा कि, बाकी सारी चीजें हम उठा के उनकी तरफ फेंक देते हैं।
2: इसलिए कि जो जब हम हराम खाते हैं तो हमारे पास इल्म नहीं होता, तो फिर हम मुताज हो जाते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम चले जाते हैं। आप ये देखिए कि आप ये देख रहे, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें, जब आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे कितने मुकर्ररीन आते हैं, कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, क्या उनसे कोई ऐसी बात जो है कोई ऐसी बात निकलती है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो आगे चले? नहीं, वो वही बात करते हैं जो इन्होंने उनके खिलाफ लिखी हुई किताबों की हो या उनके बारे में या सुनी सुनाई बात करके करते हैं। डेनमार्क के अंदर जो आइन है, अभी तक जो आइन है, ये वो आइन है जिसके अंदर इन्होंने 1952 में थोड़ी सी जो है तब्दीली की थी, लेकिन उसके पहले जो आइन है वो उमर लॉ कराता है और ये अब तक उसको उमर लॉ कहते हैं। ये मुसलमानों का है, यहाँ पे औरत से लेके बच्चे के पैदा होने से लेके हर जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट की है, और यही जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कानून था और ये इस्लाम का कानून था कि जो स्टेट में रहता होगा, जो हमारे मुल्कों में रहता होगा, उसको गवर्नमेंट जो है वो सारी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट के खजाने जो है मालूम उसके अंदर से पैसा दिया जाएगा। इसीलिए तो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो थी रोम
1: की आप बात कर रहे हैं
2: जी, हर चीज जो है ये सोशल सिस्टम है ही इस्लाम का लाया हुआ, ये बिल्कुल गौरव का नहीं ना इनका है। इन्होंने बेशक इनसे डिबेट करके देख लें, इनसे आपको आखिर ये मानेंगे कि हाँ हमने जो मेडिकल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, दूसरी चीजें ये सब हमने इस्लाम से सीखी हैं, क्योंकि देखे आपके कुरान के अंदर हर चीज वो है जो ना पहले थी और ना अब है, अब हर चीज उसके अंदर डिस्कवर है। हजरत आदम से पहले क्या था, हजरत आदम के बाद क्या हुआ, दुनिया कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई, नस्लें कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई। अब जो बंदे ये कहते हैं जी कि हम सब आदम की औलाद है, ये कुरान को नौजबिल्ला कुरान मजीद को जुटलाते हैं। अफ्रीका में जो कौमें बात हुई मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब मुख्तलिफ किस्म, चाइना, ये मुख्तलिफ किस्म की कौमें जो है ये अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ने कहा हो जाओ तो होगी। तो अब ये चीजें हैं जो ये बैठ के उलमा दीन जो जो कुरान को समझते हैं,
1: सारी इल्मी गुफ्तगू है, इस पे तो जिसके पास स्टडी होगी वही इन चीजों की बात को समझेगा या जवाब देगा। तो शाह साहब हमारे पास अभी 5-2 मिनट रहते हैं कि ये जो आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन या कम्यून के इलेक्शन, ये तो एक चीज इस्टेब्लिश होगी कि हमारा सारा निज़ाम जो है वो कोपेनहेगन कम्यून में, एल्बर्टसलंड या जितनी भी डेनमार्क में कम्यून है वहाँ पड़ा हुआ है। तो जब शाह साहब हम खुद ही इनसे फ़ायदा सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से उठाना नहीं चाहते, हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? शाह साहब हम सिर्फ गिला करने के लिए इस मुल्क में आए हैं?
2: नहीं, आपने सही बात की। इस वक्त तो हमारे दो पाकिस्तानी जो हैं वो मलिक सिकंदर और काशिफ अहमद जो हैं, ये बेशक डेनमार्क में पैदा हुए हैं लेकिन इनके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, और इनको चाहिए कि जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम्स हैं,
1: अपने तरीके से काम कर रहे हैं जो खबरें मिलती रहती हैं
2: जी, वो मैं भी उनको सुनता रहता हूँ, लेकिन बात असल में ये है कि उनको वो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए जिनमें डेंचो को भी तकलीफ है और फॉरनर्स को भी तकलीफ है। ये इनको ये नरमी थोड़ी सी पैदा करनी चाहिए। अभी आप आज की बीटी खोल के देख लें तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चौथी

0: देखिए जी, जब क्राइम रेट बढ़ता है तो उसके अंदर फिर फॉरनर फॉरनर ही होता है, वो आपको ये नहीं देखते कि आपके पास डैनिश नेशनल है या आप कौन है या क्या आपका रंग क्या है या कौन सा मतलब है, आप कहाँ से आए हैं। उसके अंदर आप सबको एक ही वो गेहूं की जो चक्की में गेहूं पेसते हैं उसके अंदर वो जो चीजें शामिल होती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन कौन पिस रहा है। तो ये चीजें जब बनती हैं तो फिर इसके अंदर कानून को सख्त करने के लिए जब वो फोर्स लेके आती है मुख्तलिफ पार्टी, तो उसके साथ हम सब पिसते हैं, जो हमारे अच्छे से अच्छे बच्चे हैं, जैसे माशाल्लाह आपके बेटे डॉक्टर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े लोग लोगों के बच्चे जो पढ़े लिखे बड़े बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, आम आदमी को तो नहीं पता ये क्या काम कर रहा है, जब उसकी शक्ल देखेगा कहेगा ये भी एक क्रिमिनल है दूसरों की तरह। तो ये चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे इंग्लैंड के अंदर है या फ्रांस के अंदर है या अपना जर्मनी के अंदर है कि जिस बंदे ने क्राइम किया है सिर्फ उसका नाम उसकी शक्ल दिखाई जाए, ना कि पूरी नेशन को जो है वो बदनाम किया जाए। तो ये फौसले जो है हमें चाहिए कि हमें अपने काउंसलर्स को कहना चाहिए कि ये कोपनहेगन में इसका बिल पेश करें और इनको कहा जाए कि जो बंदा जाती तौर पे क्रिमिनल है उसके ऊपर उसको बनाया जाए, ना कि उसके पूरे खानदान को और पूरे माशरे को इससे रिलेटेड किया जाए। और ये डैनिश आइन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, डैनिश आइन कह रहा है कि इसके इसके इसकी वजह से
1: आप बिल्कुल क्लोजिंग के पास हैं शाह साहब, जरा आपकी तरफ सवाल को मैं लेकर चलता हूँ। आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरों को हकूक लेके देने की बात करते हैं, लेकर जो इसके लिए फाइट भी करते हैं, इसके लिए डिबेट में भी जाते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं, कम्यून में भी जाते हैं, लोकल तंजीमात में भी जाते हैं। तो शाह साहब आप एक जमात के बानियों में आपका शुमार होता है, आप अपना हक नहीं ले सके। इसी तरह एक बंदा 28 साल या 20 साल एक पार्टी का सदर रहा, वो अपना हकूक नहीं ले सकता। तो ना जमहूरियत की आप बात करते हैं तो ना हकूक की बात करते हैं, दोनों चीज़ें तो आप ये खुद नहीं ले सके।
0: देखिए जी, मैं आपको एक सीधी बात करता हूँ, ये जो मैं रेडियो पे आपको टाइम देता हूँ मैं ये आपकी वजह से देता हूँ, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि आए मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें, टैक्सियों के बारे में पूछे, कानून के बारे में पूछे, आइन के बारे में पूछे, तो मैं आपको सवाल देता हूँ, मैं उसकी तैयारी भी कर लेता हूँ, जिसकी चीज का मुझे पता नहीं मैं कंप्यूटर खोल के मैं उसकी तैयारी उसी वक्त कर लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, उसको डैनिश में भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ अपनी उर्दू जबान में, मैं उसमें भी फिर वो। तो राजा साहब ये चीजें जो है इससे आपका जो शक और शुबा होता है वो दूर हो जाता है। तो मैं जो जो अपनी चेयरमैनशिप है वो मैंने खुद इसलिए छोड़ा है कि जहां पे अगर कोई यंगस्टर को लोग कहते हैं जी हमारे यंगस्टर्स आएंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये उसी जमहूरियत का मैं हिस्सा हूँ कि जो 70 से लेके 90 तक मिडल ऑफ 90s तक जो था यहाँ का माहौल बड़ा अमन पसंद था, तो वो उन्हीं बुजुर्गों के मेरे साथियों की वजह से था, मेरे कुलीगों की वजह से था। तो अब जो यंगस्टर्स आए हैं, जो यंगस्टर्स ने मैदान यहाँ पे खड़ा किया है, जो कार रेसिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे बुरे बुरे फ्रॉड कर रहे हैं टैक्स के साथ भी और दूसरों का, और रोजाना अखबारों में आया होता है, तो ये हमारे वक्तों में नहीं था ये चीज, चंद एक थे लेकिन वो उनको रिपोर्ट कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब जो जो है सब्जेक्ट ये बढ़ चुका है, तो इसके अंदर अगर किसी ने रिस्पेक्ट करनी होती तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते कि भाई ये इतना अरसा से इस कर रहा है, इससे कोई आवाज नहीं उठाई। और जमहूरियत इसी का हिस्सा है कि अगर कोई ग्रुप आप में पैदा हो जाता है तो आप देखें कि जब इमाम हसन के लिए ये सामने आया, नौजबिल्ला मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया कि भाई अब मुसलमानों ने एक फिरके ने जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे खिलाफत से छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप खलीफा बन जाए, तो जब आप छोड़ेंगे तो खिलाफत फिर मेरे पास आ जाएगी, तो उस मुआहदे को भी कैंसिल कर दिया गया। तो यही अब चीज है कि मैंने उनको कहा कि ठीक है आपने एक ग्रुप बना लिया तो आप इस ग्रुप को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको भी उनको भी चाहिए कि दूसरों को, मुझे नहीं हर ग्रुप को ये चाहिए कि जो उनके पुराने हैं, जो उनके साथ लॉयल रहे हैं, जिन्होंने असल में ये ग्रुप का क्रिएट किया है, जैसे आप कम्युनिटी के चेयरमैन है आपको शील्ड दी गई है, खुशी का मौका है, इसी तरीके

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामे नाज़रीन, ये मिला जुला आपकी आवाज़ का बराह रास्त प्रोग्राम है। समझना, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि कल हमारी जब पार्लियामेंटेरियन कोपेनहेगन के मलिक सिकंदर सदीक से बात हो रही थी, तो बजट की बातें चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजे हो रही थी लेकिन खुल कर नहीं आ रही थी। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं मलिक सिकंदर से कि आज क्या हुआ और आपकी जो तस्वीर अभी मीडिया में आ रहा है क्या हो रहा है। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत थैंक यू।
1: सिकंदर, ये क्या खबर है आज सुना है, बजट से आप वॉक कर गए हैं या निकल गए हैं या आपने बाइक काट किया, ये कहानी क्या है?
2: जी, मैंने जिस तरह के जितने भी हमारे सामाईन हैं उनको मैंने जो कि रेडियो पे मैं जब पिछले दिनों संडे के दिन बोल रहा था, तो इसी तरह मैंने जो 27 अगस्त तो पार्लियामेंट का सेशन था उसमें भी मैंने तकरीब में यही बोला और फेसबुक पे हर जगह मैंने एक ही बात की कि हम इस बजट में, हमें लॉर्ड मेयर ने इनवाइट किया, हम जाएंगे, हम इसको बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखेंगे और अपना बेहतर से बेहतर जो है इसमें हम डालने की अपना हिस्सा कोशिश करेंगे। और मैंने साथ ये भी क्लियर वाजे अल्फाजों में कहा था कि हम

0: स्कूलों पे लगेगा, जो सबसे मुश्किल हालात में येमलूस उन पे लगेगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही मैंने आपसे भी बात की थी उस दिन, और अब हम 3 दिनों से नेगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, जिसमें सारी पार्टी की आदत लीडर्स और लॉर्ड मेयर और जो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के जिनके ऑफिसर्स हैं बड़े, वो सारे मौजूद है। फ्राइडे के दिन हमने शुरू किया, सुबह 9 बजे शुरू किया, 5 बजे तक चला, फिर कल रात को जो है मेरे ख्याल से कल जो है कोई इसी तरह को 12 घंटे जो है चला, आज भी चला। तो आज जो है इस पे बहस चल रही थी, तो हमने आज वहां वॉकआउट कर दिया है, और हमने कहा कि हम अब मजीद इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि
1: तो
0: ये जो
1: पहले तो कंजर्वेटिव वाले भी निकल गए थे कल ना।
0: हाँ जी, कल कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने कल ही उन्होंने कह दिया कि हम इस हिस्सा नहीं बन सकते, उनको पार्किंग के ऊपर इश्यूज आ रहे थे। तो हमने बहरहाल क्या कहते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज किया, और कहा चले ठीक है, अगर आप मजीद बच्चों के लिए सबके लिए बेहतर करते हैं, तो फिर अगर आप सिर्फ 50 या 80 जो पार्किंग एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो हम उसको देखेंगे अभी फुल पैकेज को क्या बनता है। तो बहरहाल हम आज भी गए, और आज भी हमने वहां भी यही बात की, और देखें अजीबो गरीब, मैं अभी मुकम्मल जो है अभी लिस्ट मेरे पास है नहीं, जब ये अभी बजट बनेगा तो मैं आपको मुकम्मल लिस्ट दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ये पैसे लगा रहे हैं। और हमने इनसे ये कहा कि देखें हमारी अव्वल प्रायोरिटी ये है कि जो आम वर्कर है, लेबर जो है हमारी कोपरागर की, जो आम बच्चा है, आम आवाम है, इस बार बजट का बड़ा हिस्सा उनके लिए जाना चाहिए। और इस पे फिर बहुत बहस चली है। अब उधर ये नेगोशिएशन होती है ना, बड़ा लंबा टेबल होता है, उसपे सारे पार्टी लीडर्स और उनके साथ एक दो जो उनके एडवाइजर वगैरह होते हैं या उनके जो मेंबर होते हैं वो बैठे होते हैं। मैं लॉर्ड मेयर के साथ, जो लॉर्ड मेयर की टीम थी उसके साथ मैं बैठा हुआ था। इस तरह सब पार्टियां, लंबा टेबल होता है, अब सारे बैठे होते हैं, उसमें फिर बहस चलती है और डिबेट होती है, और उसपे तो हमने
1: का क्या रोल था?
0: देखिए होता ये है कि जो ये एक कानून है कि जब जो ये जो नेगोशिएशन चल रही होती है ना, जो कमरे के अंदर बात होती है वो आप बाहर नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने वहां क्या बात की, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि दूसरे बंदे ने क्या बात की। लेकिन इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि हमने वहां पे कहा कि जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री खाना मिलना चाहिए स्कूलों में। हमने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होनी चाहिए। हमने कहा कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे के सबसे मुश्किल हालात में जो लोग हैं, जो जिनके जो बेघर हैं, जो येमलूस हैं, वो इन सर्दियों में बहुत बड़ा इशू रहा है, रात को जगह नहीं होती तो वो ठटरते हैं और रातों को उनको सर्दियों में बाहर गुजारनी पड़ती है। तो हमने कहा यार कोपेनहेगन इतनी रिच एक कम्यून है, उनके लिए गारंटी होनी चाहिए कि उनके पास शेल्टर हो, जगह हो, यानी कि घर हो जिसका शेल्टर होता है, उसमें वो जाके रात अगर ठंड हो तो वो गुजार सके। इसी तरह हमने कहा कि कोपेनहेगन कम्यून में हम मुसलमान जो है, माइनॉरिटीज जो है, हम वाहिद ऐसे है इस मॉडर्न जमाने में कि हमारे ऊपर कोई डेटा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से, हेल्थ पॉलिसी के हवाले से। और पुलिस ने 2024 में जो बनाती थी हर साल कि कितने होते हैं, उसके बाद कितने वाक्य वो बताती थी कि 700 के करीब वाक्य होते हैं, वो उन्होंने 2024 से खत्म कर दिया। हमारी ये डिमांड थी कि कोपेनहेगन कम्यून जो है वो खुद अपना सर्वे करे, जो माइनॉरिटीज है उनके घर पे वो ई बॉक्स के थ्रू वो आए, एक स्पेयर स्कीम है जिसपे आप लिख सकें। क्यों जरूरी था? ताकि वो जब हर साल जमा हो तो हम उसके उसके हिसाब से पॉलिसीज पे बना सके कि देखिए ये इश्यूज है मेरे माइनॉरिटीज को, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस पे भी इन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया। और जबकि वहां पे बस मैं यही ख्याल रख रहा था,
1: चले ये उसका मतलब है कि दोबारा चांसेस वो आप लोगों से रिज्यू कर सकते हैं।
0: वो जाहिर बात है जब तक बजट बंद नहीं होता तो रिज्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहां बड़ी क्लियरली अभी घंटा पहले ही मैंने किया, आपने देखा इसलिए ब्रेकिंग न्यूज लगी है छिविछो पे और छिविछो कॉस्मोपोल पे, मैंने वहां बहुत क्लियरली ये बात कही है कि हम जो तवक्को रख रहे हैं और जो हजारों की लाखों की तादाद में जिस वोटर ने सोशल डेमोक्रेट को हटा के आपको वोट दे के अब लाए हैं, उनकी तवक्कोआत ये नहीं है कि आप फिर उसी तरह करें जिस तरह पहले चलता आ रहा है। उनकी तो तवक्को है

0: अब फिर सियासत चेंज होगी कोपेनहेगन की, अब डिफरेंट होगी। अब इनोसिस सबसे बड़ी पार्टी है, एसएफ लॉर्ड मेयर की पोस्ट पे बैठी हुई है। इस हवाले से हमने इनको, मैंने बड़े वाजे अल्फाजों में, मैं उठने से पहले मैंने बल्कि बता ही देता, मैंने इस तरह शुरू किया। मैंने कहा कि मैंने उस दिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी यही बात की है, असेंबली के फ्लोर पे, और मैंने यहाँ पे भी बार बार कर रहा हूँ आपकी, मैं समझता था कि ये बजट जो है इस बार डिफरेंट होना चाहिए। पहले जमाने में जिस तरह कभी सॉलिडेरिटी को सामने रखते हुए आप बच्चों पे बूढ़ों पे पैसा लगाते थे, ये इस तरह का बजट होना चाहिए। इस पे मैं उसका नामो निशान नहीं देख रहा। इस वजह से 3 दिनों के बाद अब मैं इस फैसले तक पहुंचा हूं कि हमारा अब मजीद इस नेगोशिएशन में, इस हैंडलिंग में बैठना अब हमें नागुजारा है, क्योंकि हमें जो जिस तरीके से ये शेप ले रहा है, जिसमें मैं भी आपको लिस्ट ला के दूंगा जिसपे आप देखेंगे कि किस तरह ये क्या क्या वो उस पे पैसे पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा जब इंसान की बेसिक नीड पूरी नहीं है, जब लोग पैसों के हाथों फैमिलियां तंग है, जब इतने कोर इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, फजूल जगहों पे आप पैसे लगा रहे हैं, इसका हम हिस्सा नहीं बन सकते। ये बात मैं वहां करके मैं वहां से उठाऊं
1: तो ये
0: और
1: फिर
0: मैं
1: बजट पास होने की आखिरी तारीख कौन सी है?
0: ये हफ्ता और जो दूसरा हफ्ता होता है, ये 2 हफ्ते होते हैं जिसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कल तक परसों तक ये एक डील कर लेंगे।
1: मतलब ये सारा डील पे चलेगा, सारी पार्टियां डील करेंगी, क्या क्या हिस्सा मिलता है, जितना जुस्सा इतना हिस्सा लेंगे अपना।
0: बिल्कुल, देखे ना, फिर वो यही होता है ना कि मुझे सिर्फ इस चीज से ये इशू है कि आप जो कमरे के बाहर बात करते हैं ना, जो आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, जो आप वोटर्स के सामने बात करते हैं, वही बात फिर आप बंद दरवाजों में के पीछे भी किया करें। और मैं समझता हूँ कि हम इलेक्ट इसलिए होते हैं कि हम अपने अवाम के लिए इलेक्ट होते हैं, हम एक दूसरे को पावर में रखने के लिए इलेक्ट नहीं होते। सो इसलिए हमारा बहुत वाजिया एक स्टांस था, पहले दिन से था, हमने बहुत जोर लगाया है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखें जो राइट विंग पार्टीज है ना, उनपे तो मैं कोई ना ही तो रखता हूँ ना ही रखनी चाहिए, लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, मैं समझता हूँ मेजोरिटी उनकी थी, मेजोरिटी उनकी है, तो मैं उनसे यकीनन, मुझे वो है एक एक उन्होंने उम्मीद तोड़ी है, क्योंकि 123 साल के बाद एक नई लॉर्ड मेयर आई है, उसको तो इसका पास रखना चाहिए था ना, चेंज करना चाहिए था। इसलिए आप देख रहे हैं अब मीडिया सारा जो है वो अब वो उसे जो जो जो छिछो खसमफूल है, उन्होंने अब रब्ता कर रहे हैं ना लॉर्ड मेयर से, कह रहे हैं सिकंदर ये जो बात कर रहे हैं आप इसके ऊपर कमेंट दें। अब उसने कहा है, कह रही है कि मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। वो क्या दे कमेंट, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप बताएं मुझे कि क्या ये हो सकता है कि एक वो कोपेनहेगन
1: चलें,
0: में
1: आप लोगों ने जिनसे वोटें ली हैं, जो आपका पार्टी का है, जो तरीकाकार है जिसे कहते हैं सोलिडेरिटी के लिए, आपने कोशिश पूरी की, और जो आपका मौकफ था आपका तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो आप वॉकआउट कर गए।
0: नहीं, देखें देखें यही होता है ना, अब मैं अगर चाहता तो मैं बैठा रहता, मैं कहता चले ठीक है, और फिर मैं बजट का हिस्सा बनता, फिर हम एक दूसरे को, जो कमर नहीं होती, कमर खुजाते हैं एक दूसरे की, मैं भी बैठा रहता। लेकिन हम, हमारी सियासत ऐसी नहीं ना कि हम कहते हैं कि नहीं, जो आपने पहले वादे किए हैं उन वादों पे उतरे। मैंने ये बात की है वहां पे भी ना कि आप लोगों ने क्या इलेक्शनों में वादे किए जिस वजह से लोगों ने आपको वोट दिए और सोशल डेमोक्रेट को नहीं दिए, उन वादों पे उतरे, अब आपके पास पावर है। सो
1: चलें
0: हम अगर
1: सिकंदर,
0: चाहते हैं ना,
1: आपका बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, तो इंशाल्लाह बाकिया जो है इतवार संडे वाले दिन आपको बराह रास्त दोबारा लेंगे।
0: थैंक
1: समय नाज़रीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक, जो कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बजट्स का जो पास होने जा रहा था उससे उन्होंने वॉकआउट कर लिया है, लेकिन फिर भी बातचीत हो सकती है, यहाँ एक डेमोक्रेसी है, यहाँ बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। समय नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बराए रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, आज की खबरें लेकर, आज की ताज़ा तरीन मुल्की हालात लेकर आपके साथ हैं। हमारे साथ हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ बराए रास्त मौजूद हैं। शाह साहब, एक बार फिर आपको आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये माह रबी अव्वल है और मिलाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, सबको मुबारक हो। जी राजा साहब,
1: खैर मुबारक। शाह साहब, इसके प्रोग्राम हो चुके हैं, सारी मसाजिद में हो रहे हैं, सब अदारों में हो रहे हैं, ये प्रोग्राम हो चुके हैं, अभी भी जारी और सारी हैं। इसके अलावा शाह साहब, अब बजट की बातें जो हैं कम्यून्स में की जा रही हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
2: देखिए जी, इस वक्त जो अपना कम्यून्स हैं वो अपने अपना बजट पेश कर रही हैं, और मेजॉरिटी कम्यून्स के पास जो है वो इतना पैसा ही नहीं कि वो किस तरह सरमाया जो है वो आगे लगाए। लेकिन क्योंकि अभी डिबेट अभी शुरू हुई है, अब ये देखना है कि इसका एंड क्या होता है और कौन सी पार्टी जो है वो विनर, ये कह सकते हैं सियासत में कि किस ग्रुप को जो है वो अहमियत हासिल है, और वो अपने अपने जो उन्होंने चीजें सामने लेके आए, जो वो अपना एक किस्म की कहते हैं कि हमने सड़कें बनानी है या हमने बिल्डिंग्स बनानी है या हमने ये करना है या हमने किसको चीज को सोशल वेलफेयर को सपोर्ट करना है, किस तरह, ये चीजें जो है ये अभी पता लगेगा जब फाइनल जो है इनकी ग्रुप मीटिंग्स होंगी, तो उसके बाद पता लगेगा कि कौन पार्टी जो है वो कितनी ताकतवर है, कौन सा ग्रुप जो है वो सामने आ रहा है।
1: देखा जाए तो अपने सिटी काउंसिलर काम कर रहे हैं, जो काम हमें नजर आ रहा है वो तो मलिक सिकंदर सिद्दीक, जो आपके साथी हैं, आप उनको बड़ा आपने सपोर्ट किया, आपने उनका जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आपने की, और आज भी जो है वो बैकडोर जो है वो आप एडवाइस देते रहते हैं। तो शाह साहब, और भी कोई नाम सामने आया है?
2: देखिए जी, इस वक्त जो मलिक सिद्दीक है वो अपना पार्टी, क्योंकि पार्टी फोरमैन भी है फ्री ग्रोने का, और वो एक लीडर के तौर पे ऊपर वो बात कर रहा है, जो भी जो वो बात कर रहा है वो अपनी अपने आप को, अपने ग्रुप को एक बात याद रखें कि इसने जो था वो मुआहदा किया हुआ था दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से, जिनका कोई नुमाइंदा जो है वो कम्यून में इलेक्ट होकर नहीं आया, तो ये उनके साथ भी जो उनके भी कोई फोर्स ले थे, यानी कि उनके भी कुछ चीजें थी जो पेश करनी है, वो उन सबको सामने ला कर ये काम कर रहा है। इसी तरीके से काशिफ अहमद है, वो अपनी पार्टी जो रेडिकल वेंस है उसको उसके बहाव पे वो बातें कर रहे हैं, उसके खैर दूसरे भी साथी हैं जो रेडिकल के वहां बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि क्या ये चीजें जो है जिसके ऊपर इस वक्त बहस हो रही है, क्या इस बजट के अंदर ये अवाम दोस्त, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि अवाम दोस्त बजट है, या ये सिर्फ अमीर दोस्त बजट है? तो हमने ये देखना है कि क्या ये
1: दोस्त क्या होता है और अमीर बजट क्या होता है।
2: देखिए जी, जो अवाम दोस्त है वो अवाम का ख्याल रखते हैं, अवाम की सहूलत के लिए बहुत ज्यादा चीजें रखते हैं, और जो होता है क्या नाम है, ये तकलीफात नहीं बढ़ाते हैं कि आपने यहाँ गाड़ी पार करनी है तो आपको 50 करोड़ देने पड़ेंगे, 60 करोड़ देने पड़ेंगे, 4000 करोड़ देना पड़ेगा, 5000 करोड़ अगर आप वहां पे रिहायशी हैं तो आपको अपनी पार्किंग, अपनी ही पार्किंग में इतने इतने सालाना फीस देनी पड़ेगी, जिसको आप बाज पार्टी जो है वो ये कह रही है कि 30,000 तक कर दे। तो ये जो है
1: मुमकिन है?
2: देखिए जी, ये जो है कोपेनहेगन को जो है वो खत्म कर देंगे, अगर आप पीछे जाएं 2023 से लेके 2025 तक, तो आप ये देखेंगे कि 23 से 25 तक 40 से 50 हजार जो है, 40 से 50 हजार जो लोग हैं वो अपना जो है वो बकायदा लोग जो है वो मूव कर गए थे कोपेनहेगन से, कुछ वेस्टाइन में चले गए, कुछ जो है वो लुंगवी और फॉर्म की जो साइड पे चले गए। تو لوگ جو ہیں میجورٹی جو ہے وہ وہاں سے موو کر گئی, اور یہ وہ آفیشیل ٹھل ہیں جو لوگوں نے, جو گورنمنٹ نے خود ایشو کیے, اور اس کے علاوہ جو لوگ گئے ہیں وہ ایک علیحدہ. اب اس 2026 میں اگر یہ پرابلم کرتے ہیں تو 2026 اور 2027 میں کتنے لوگ کوپن ہیگن سے موو کرتے ہیں؟ دیکھیں جنہوں نے گاڑی رکھی ہے, جو کوپن ہیگن سے باہر کام کر رہے ہیں, ویسٹ ہائن میں کام کر رہے ہیں, کسی جگہ بھائی شیلینڈ میں کام کر رہے ہیں, تو میاں بیوی بی کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے,
1: پڑتی ہے. شاہ صاحب ایک سوال ہے, چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے, آپ نے بہت ساری پارٹیوں کو قریب سے دیکھا ہے. شاہ صاحب 123 سال کے بعد جو ہے یہ لارڈ میئر کی جو سیٹ ہے سوشل ڈیموکریٹ سے چھین کر یہ اب ایس ایف کے حصے میں آئی ہے, تو لارڈ میئر کا یہ پہلا بجٹ ہے, تو پہلے بجٹ میں انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کے لیے اگر یہ پورے نہ کیے گئے تو شاہ صاحب پھر کیا سائن آئے گا؟
2: دیکھیں جی, مجھے تو ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوشل ڈیموکریٹ کے پاس ہی میئر شپ ہے, کیونکہ جو چیزیں اخبار میں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر یہ آ رہی ہیں کہ یہ امیرانہ بجٹ ہے. امیرانہ بجٹ میں اس پہ یہ بات کروں گا, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی فرمز کو ٹھیکے دیے جائیں گے کہ آپ فٹ پاتھ اس طرح بنائیں, روڈز کو تنگ کیا جائے, پارکنگ پلیس زیادہ بنائے جائیں, جہاں سے ہم کو جیسے ابھی پچھلے سال پارکنگ کے اندر 104 ارب روپے کا کرونے کا ان کو پروفٹ ہوا ہے, اور آپ یہ حساب لگائیں کہ اگر ان کو کمیون کو 104 ارب کرونے کا جو ہے وہ پروفٹ ہوا ہے, تو جو کمپنیاں یہ چلان کر رہی ہیں جنہوں نے یہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, انہوں نے کتنے 100 بلین ڈالرز انہوں نے کمائے ہوں گے, اور وہ بغیر ٹیکس کے یہاں سے لے جائیں گے. دیکھیں یہ سب سے بڑی غلطی اس وقت ہوئی تھی جب 90s کے بعد انگلینڈ سے کچھ فرمز آئیں ڈینمارک کے اندر, انہوں نے کہا کہ اس کو لندن ماڈل بنانا چاہیے. میں اس وقت وینسٹا میں تھا تو میں نے اس کی زبردست مخالفت کی, میں نے کہا دیکھو لندن اور نیو یارک ماڈل یہاں کوپن ہیگن میں مت بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کی کیوں تکلیف ہے؟ تو میں نے کہا یہ دیکھو کہ لندن اور نیو یارک میں مافیا کے لوگ رہتے ہیں, وہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کرپشن کا بے شمار پیسہ ہے, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بغیر ٹیکس کے کام کر سکتے ہیں, ہر ایک چیز کرتے ہیں,
1: مشکل کام ہے. یورپ میں تو قانون حکومت کرتا ہے, لوگ تو نہیں کرتے.
2: نہیں, پر یہاں پہ سیاستدانوں نے اس چیز کو اس خون کو منہ میں لگا لیا, اور انہوں نے یہ کیا کیا کہ یہاں پہ جو ہے سڑکیں تنگ کر دیں اور پارکنگ پلیس کو جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دیا.
1: جب آپ نے اور ہم نے جو ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پارکنگ فری ہونی چاہیے, لیکن اب آوازیں اٹھ رہی ہیں ویکینڈ میں بھی فری ہونی چاہیے, پارکنگ فیس کم ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف دوسری آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو شاہ صاحب اگر یہ فری کرونے اس بجٹ کا حصہ بنتی ہے تو ان کی باتیں نہیں مانی جاتی, تو انہیں بجٹ سے بیچ میں رہنا چاہیے یا باہر رہنا چاہیے؟
2: دیکھیں جی, بجٹ کے بیچ میں رہ کے بات کر سکتے ہیں, دلائل دے سکتے ہیں, دلائل سالڈ ہونے چاہیے, مضبوط ہونے چاہیے, تاکہ آپ کی آپ بات منوانے میں. دیکھیں اس وقت جو 80% لوگ ہیں کوپن ہیگن کمیون کے اندر, ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں یا کوپن ہیگن میں رہتے ہیں, وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیون سے آئے ہوئے ہیں یا یولینڈ سے آئے ہوئے ہیں یا لانگ لینڈ سے آئے ہیں یا دوسرے دور دراز علاقوں سے آ کے کوپن ہیگن میں وہ وقتی طور پہ 5 دن کام کرتے ہیں, فرائیڈے آفٹر نون یا سیٹرڈے کو وہ اپنے اپنے گھروں کو پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بالکل کوئی چیز کی پرابلم نہیں ہے, وہ سائیکل پہ جاتے ہیں, سائیکل پہ آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو اگر یہ سہولت نہ دی جائے گاڑیوں کی اور وہ سائیکل پہ جائیں تو یہ بہت مشکل بات ہے. اب جس کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں وہ سائیکل پہ دو تین بچوں کو لے جا کر اور بارش یا طوفان کے اندر یا برف کے اندر وہ ان کو لے کر نہیں جا سکتے. پھر کوپن ہیگن کے شان بھی یہ ہے کہ کوپن ہیگن کے اندر گاڑیاں جو
1: ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں, آپ بھی ذکر کرتے ہیں, کمیونٹی فورم بھی اس کا ذکر کرتی, اگر یہاں جو ہے ٹرینیں بسیں فری کر دی جائیں ٹوٹل تو کتنے کا اخراجات آ سکتے ہیں؟
2: دیکھیں جی, بسیں جو ہیں وہ پہلے ہی گورنمنٹ کے بجٹ پہ چل رہی ہیں. اگر گورنمنٹ اس کو فری کرتی ہے تو ان کو عوام کو جو ہے اس کی سہولت ضرور ملے گی, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بسیں جو ہیں وہ صرف چند ایک روٹس پہ چلتی ہیں, اور بسوں کے لیے بھی اتنی بڑی سڑکیں نہیں ہیں, سڑکیں بہت زیادہ تنگ کر دی گئی ہیں, اور بسیں جو ہیں اس کے لیے بھی اب ڈرائیور جو ہیں وہ تقریباً इतने ज्यादा मुयसर नहीं है यहाँ पे। और ड्राइवर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जॉब्स लें, मेजॉरिटी ड्राइवर्स जो हैं वो अब ट्रक्स की तरफ देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म बसेस की तरफ देख रहे हैं। आप कोपेनहेगन को देखें कि 40 किलोमीटर की स्पीड कर रहे हैं। 40 किलोमीटर क्या मतलब कि 15-16 मील की रफ्तार से आप गाड़ी चलाएं, आप सेकंड गियर से थर्ड गियर में जा ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हमारे जो एक्सपर्टीज हैं कोपेनहेगन कम्यून ने जो रखे हुए हैं, जो एम्प्लाइज किए हुए हैं, वो इस तजर्बे से लोगों को
1: कम
2: बिल्कुल, हाँ, ये चीज जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप ये देखें कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट की वजूहत क्या है कि देखें, जब ये गाड़ी स्विंग होती है, पास करते हैं, तो इन्होंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया कि जो साइड के शीशे हैं वो जो है आरसी शीशे हैं, उसके अंदर आपका डिस्टेंस जो है, गाड़ी का जो पीछे गाड़ी आ रही है वो आपको बिल्कुल आपके बम्पर से बम्पर लगी होगी, तो वो शीशे से आपको नजर आएगी कि ये बहुत दूर है,
1: कितना
2: अभी अभी बहुत दूर है। और अगर आप दरमियान वाले शीशे से देखेंगे, सेंटर वाले शीशे से, तो आपको एकदम एहसास होगा कि वो तो बिल्कुल मेरे बैग पे लगी हुई है। तो लोग बाजों का जब बेंड को चेंज करते हैं, साइड को
1: तो
2: चेंज
1: शाह
2: करते
1: साहब
2: हैं, लेफ्ट
1: आपका
2: से राइट
1: मतलब
2: टर्न
1: है कि
2: करते हैं।
1: ट्रैफिक का निजाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। डेफिनेट शाह साहब, ये मुल्क टैक्स पे चलता है, ये सहूलियात जो मिलती हैं ये टैक्स की वजह से मिलती हैं, कम्यून में जो सहूलियात मिलती हैं या बूढ़ों को मिलती हैं, हैंडीकैप्स को मिलती हैं। शाह साहब, जब दूसरे ममालिक में ये सिंपल हैं कि बसों का पेंशन इसके लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन यहाँ तो पेंशन का जो हम सुनते हैं कि गुजारा करना मुश्किल है।
2: देखिए जी, आप इंग्लैंड में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, वहां पे आप सिर्फ ये प्रूफ कर दें कि आप 60 हैं, आप एक दिन भी ऊपर हुए हैं, 60 आपके एज हुई है, तो आपको वो बगैर किसी सबूत के आपको वो कहेंगे कि आप बस में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में इतना पैसा आपको लगेगा, आप सफर कर जाए। आपको मेजोरिटी बसेस जो हैं उनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफर कर सकते हैं, बल्कि आप तो वो अगर आप मैनचेस्टर से लंदन जाए तो जो गवर्नमेंट की बसें हैं जो नॉर्मल रूट से चलती हैं उनके अंदर भी आप फ्री हैं, और जो दूसरी बसें हैं उसके अंदर भी ना पेमेंट करने के बराबर आपको इतनी सहूलतें दी गई हैं। और फिर हैंडीकैप को तो वो बहुत ही ज्यादा, और बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं जिनको जैसे कि हमारी एज है, इनको तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीट देते हैं, पीछे नहीं बैठने देते, फ्रंट पे बैठाते हैं ताकि इनके लिए उतरना और चढ़ना जो है आसान हो जाए। बड़ी सहूलत
1: लेकिन शाह
2: उन्होंने
1: साहब,
2: फ्रेम
1: आप
2: किया।
1: तजावीज़ दे रहे हैं, आप लिखते हैं, चूंकि आप थिंक टैंक हैं, तो आप वेंस्ट्रा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लीडरशिप को जानते हैं, और आप उनकी वॉलपेपर पे लिखते भी रहते हैं और आपको ये मैसेज जवाब भी मिलता रहता है। तो शाह साहब, एज ए गैर मुल्की इस वक्त करना क्या चाहिए?
2: देखिए जी, इस वक्त हम लोग गैर मुल्की तो यहाँ पे वो होगा जिसको अभी तक यहाँ के परमानेंट वीजा नहीं मिला। यहाँ पे जब जिसको येलो कार्ड मिल जाता है, स्विस सिक्किम बेवीस मिल जाती है, तो वो उसके उतने ही राइट्स हैं जितने एक
1: राइट
2: डैनिश पासपोर्ट होल्डर के हैं। मसला अब ये क्या है, मसला ये है कि कुछ कानून ऐसे बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर जो कि लॉ फोर्सले है, जो लॉ नहीं है, लॉ भी हो तो वो आइन के, अगर आइन के खिलाफ वर्दी है तो वो जो है वो खत्म हो सकते हैं। हमारे कोई भी सियासतदान जो है इसके ऊपर बात नहीं करते, ना वो इसके ऊपर कोई राय लेना चाहते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मसला ये है कि कोपेनहेगन और वेस्ट आइन में लोगों को वैसी ही सहूलत देनी चाहिए जैसे उडनसे के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर उन्होंने सहूलतें बनाई हुई हैं। आपको पता है कि आपको खालिद भट्ट साहब ने यह बताया था कि उडनसे बकायदा स्टेशन के ऊपर, मैं अभी देख के आया हूँ, उडनसे स्टेशन के ऊपर उन्होंने जो है वो बकायदा बहुत सर्विस बनाई हुई है कि आप
1: तो
2: उतरते
1: शाह
2: ही
1: साहब,
2: वहीं उसके अंदर
1: आसानियां आ
2: चले जाए।
1: रही हैं उडनसे वालों को, पहले मिल गई हैं। अभी यहाँ के जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं, जितने भी कम्यूनों में बैठे हैं, आप हमेशा कहते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। शाह साहब, ये जो अभी लॉर्ड मेयर हैं अपना यहाँ कोपेनहेगन से, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट, तो मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है, कि वो इस सारे सिस्टम को कामयाब हो जाएंगी, या वो तनकीद का निशाना बनेंगी, या वो सबकी तालियां लेंगी, या सबकी दुआएं लेंगी?
2: देखिए जी, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है इनिस लिस्टन, और ये एसएफ की जो बॉबेस्टर है, इसके पास इतना बड़ा तजर्बा नहीं है। कम्यून और पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंस यही है कि कि जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो सिर्फ लॉ मेकर्स होते हैं या पार्टी की सियासत को आगे लेके चलते हैं। जो कम्यून होती है, कम्यून के बजट के अंदर जो सियासतदान इलेक्ट होते हैं, काउंसलर इलेक्ट होते हैं, उनको कुछ तो अपनी पार्टी का भी मंशूर देखना पड़ता है और कुछ उनको अपनी जहानत भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये देखना पड़ता है कि हमारे इलाकों के इलाके में जहां कल को हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए जाना है, वहां हम क्या पेश कर सकते हैं और हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पे तख्तियां नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर लिखी जाती है कि इस बंदे ने ये चीजें जो है वो मिनट्स पेश की है और उसके ऊपर हाँ या ना हुई ये एक अलग बात है। लेकिन हिम्मत वही कर सकता है जो अवाम के अवाम दोस्त हो, अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश करे, ख्वाब वो अकेला वोट हो या उसके पास 50 वोट हो। बात उनको अवाम की करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना चाहिए, पूरे कोपनहेगन के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग होनी चाहिए। बाज़ुकात आप ऐसी जगह जाते हैं कि आप जहां किसी को विजिट करने के लिए जाते हैं पूरे वेस्ट आइन और कोपनहेगन में मेजोरिटी जगह पे, तो आपको वहां पे बकायदा वो जो है वो हाउस कीपर से एक कार्ड लेना पड़ता है जो आप अपनी गाड़ी में रखेंगे ताकि आपको पार्किंग टिकट ना लग जाए। और ये इतना डिफिकल्ट है कि आप किसी को विजिट करने जाते हैं और आपको
1: तो
2: इस असूल
1: इसका
2: का पता नहीं
1: है कि जो मामलात हैं सख्त सख्त होते जा रहे हैं, कानून में सहूलियात नहीं मिल रही, सख्तियां मिल रही हैं, गो के रेवेन्यू भी जो है वो बाकायदा मिल रहा है, अच्छी तादाद में प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। तो शाह साहब हमारे पास एक मिनट है, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे?
2: जी मैं नौजवान नस्ल को ये कहूंगा कि देखिए ये आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान की सियासत को भूल जाएं, यहाँ की सियासत में यहाँ के कानून का आप एहतराम करें, आपको कोई बुरा शायरी नहीं कहेगा। हम इसी मुल्क के अंदर 1970 से लेके 1990 से थोड़ा सा ऊपर हमने यहीं पे जिंदगी गुजारी है, हम भी उस वक्त जवान थे, यंग थे, तो ये बताएं कि ये लोग राशिस्ट नहीं थे, बल्कि हमने खुद अपने अंदर राशिज्म पैदा किया, इसको हमें खत्म करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए, अगर आगे भीड़ है, अगर रश है तो बड़े एहतराम से अपने इंतजार वेट करें, बल्कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम बहुत ज्यादा रश है, तो आप 15 मिनट पहले निकल जाए, आप मोबाइल टेलीफोन को इस्तेमाल ना करें गाड़ियों में। और जितने भी हमारे नए बंदे आ रहे हैं जो इस वक्त वाहन और दूसरी गाड़ियां बड़े ट्रक चला रहे हैं, वो इतना रफ सड़क को एक से दूसरी साइड पर जाते हैं, तो और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लाजमन गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि अगर कोई आगे गाड़ी जाती हुई इंडिकेटर दिए बगैर ही जो है वो
1: तो
2: रश टाइम में।
1: शाह साहब चलते चलते साइकिलों वालों को क्या पैगाम देंगे?
2: इस साइकिल वालों के की बाइक जो है इसको इंश्योर्ड होना चाहिए, इसको बकायदा एक नंबर इशू होना चाहिए, जैसे ये 70s में था, 60s में था, इनके ऊपर नंबर होना चाहिए और ये बकायदा इंश्योर्ड होने चाहिए ताकि इनको चलाते हुए पता लगे कि ये किसका साइकिल है, कौन टक्कर है, कौन गलत चल रहा है, और इनको इनको भी उतनी ही सजा देनी चाहिए जितना एक मोटरसाइकिल वाला या एक कार वाला मुजरम है।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन ये थे हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जिन्होंने कीमती मालूमात दी। कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारा चैनल हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेशे खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मुसलमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मुसलमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुसलमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मौजूद सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। माज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।